FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:55 होने को हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15

0: तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे मानव, ये शरीर नश्वर है और इसे एक दिन नष्ट हो जाना है। हम सभी ये जानते हैं, किंतु फिर भी माया के वश में होकर हम अपने पूरे जीवन में अनेक अपराध और पाप करते हैं। किंतु जब तू ये जान जाएगा तो तू उस परम पिता परमेश्वर, उस शाश्वत सत्य को स्वयं को समर्पित कर देगा। इसीलिए हे मानव, जाग और इस अकाट्य सत्य से अवगत हो जा।

0: इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे पंडित नारायण राव व्यास, पंडित राजन साजन मिश्रा, पंडित कुमार गंधर्व, ब्रह्मचारी भगवान दास और ब्रह्मचारी सुखदेव दास और हामिद परवाना कव्वाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार मनोनिग्रह का रहस्य। आलेख जे आर यादव का है, वाचन कर रही हैं विजया भामरी।
1: विश्व के सांस्कृतिक पर्दे पर भारतीयता की पहचान त्याग में है, भोग में नहीं। त्याग वो आध्यात्मिक आदर्श है जिसकी ओजस्व धारा भारत में हजारों वर्षों से बह रही है। त्याग भारतीयता की गहराई में बैठी वो जड़ है जिस पर लोक कल्याण का विशाल पेड़ खड़ा है। त्याग ही से धर्म का आरंभ होता है और त्याग ही में उसकी परिसमाप्ति। मुक्ति ना संतानों से होती है, ना धन से, ना यज्ञ से, वो अमृत्व केवल त्याग से मिलता है। यही भारत के सब शास्त्रों का सार है। ज्ञान, भक्ति और कर्म की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर है कि वे लोकोपकारी हो। इसलिए ये आवश्यक है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म में त्याग का भाव हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि तुम त्याग कर सको तो तुम्हें धर्म मिल सकता है, यदि तुम त्याग नहीं कर सकते तो तुम पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे संसार में जितनी पुस्तकें हैं उन्हें पढ़कर समस्त पुस्तकालयों को निगलकर धुरंधर पंडित हो सकते हो, परंतु यदि तुम केवल उसी कर्म कांड में लगे रहे तो वो कुछ नहीं है। इसमें आध्यात्मिकता कहीं नहीं है। केवल त्याग के द्वारा ही इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्याग ही महाशक्ति है जिसके भीतर इस महाशक्ति का आविर्भाव होता है। वो और की तो बात ही क्या, विश्व की ओर नजर उठाकर नहीं देखता, तभी सारा ब्रह्मांड उसके निकट गाय के खुरे से बनाए हुए गड्ढे के समान नजर आता है। विद्या यदि विवाद के लिए है, धन उन्माद के लिए है और शक्ति पर पीड़न के लिए है, तो वे सभी व्यर्थ हैं। त्याग का आदर्श महान है, स्वामी विवेकानंद का विचार है, त्याग ही भारत की पताका है। आज के मानव का मन भोगवाद की ओर उन्मुख है, अतएव हमें थोड़ी त्याग तपस्या चाहिए। प्राचीन काल में भारत में त्याग ही की विजय थी और अब भी भारत में इसे विजय प्राप्त करनी है। ये त्याग भारत के आदर्शों में अब भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। त्याग कोई पारलौकिक चीज नहीं है, त्याग की सार्थकता है भोग में त्याग। वस्तु का भोग करते समय लोक संग्रह का भाव होना चाहिए। धन उतना ही संग्रहणीय है जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है। आवश्यकता से अधिक संग्रह चोरी है, हिंसा है, पाप है। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार अपेक्षित है। शरीर साधना का साधन है, साध्य नहीं। शरीर को साध्य मानकर अतिशय भोग करना राक्षसी धर्म है। त्याग की तत्व मीमांसा समझे बिना भोग की थकान से विश्रांति कहाँ। इसलिए शंकराचार्य जी ने भोग की वस्तुओं में बारंबार दोष देखते रहने की सीख दी है। उपनिषदों में कहा गया है कि त्याग भाव से सांसारिक विषयों का भोग करना चाहिए और पराय धन का लालच नहीं करना चाहिए। धन से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये मनुष्य का अविवेक है कि वो चिंता और असुरक्षा की भावना से मुक्त होने के लिए धन का संग्रह करता है। मनुष्य जो जो कंचन और कामिनी को मूल्यवान समझ रहा है, त्यों त्यों उसका जीवन दुख से बोझिल होता जा रहा है।

0: है। धन अशांत चित्त का कारण है, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। सांसारिक वस्तुओं को विवेक पूर्वक ग्रहण करने से दुखों से बचा जा सकता है। आज अधिकाधिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति लोगों में घर कर रही है, परंतु अपना सब कुछ त्याग कर जो लोक संग्रह में रत होता है वही सच्चे आनंद का अधिकारी होता है। ऐसे ही त्यागी महापुरुषों के कारण मानवता को प्रकाश प्राप्त हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार, मनोनिग्रह का रहस्य। आलेख J.R. यादव का था, वाचन कर रही थी विजया भामरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर अनुराधा मराठे और श्रीकांत परगांवकर के थे। संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। रात्रि 10 का समय रहेगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे खेती की बातें। विषय होगा मिर्ची की फसल सुरक्षा। प्रातः 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज भाषा झलकी कैसो जमानो आयो। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोक गीतों का। प्रातः 8:30 का समय रहेगा चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। प्रातः 9 बजे सुनेंगे बातचीत, बैनामा या रजिस्ट्री तैयार कराते समय सावधानी, जानकारी देंगे डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल, इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। प्रातः 9:30 का समय रहेगा ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अरुण कुमार तिवारी का सितार वादन, समय रहेगा प्रातः 10 बजे। प्रातः 10:30 पर आकाशवाणी संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आएंगे नाटक बड़ी साध्वी चंदनवाला।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस होगा दोपहर 12 बजे। पुष्पलता शर्मा के गाए हुए ब्रज लोकगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 से। बहनों का कार्यक्रम घर अंगना हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 1:15 से। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा जल ही जीवन है, स्वजनगणना कराएं और संचारी रोगों से विशेष देखभाल। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोकगीतों का। दोपहर 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन।

संध्या 5:30 से दूसरी सभा का आरंभ होगा कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास पर। संध्या 6:15 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा पशु

पोषण में खनिज लवण और गर्मी में पशुओं की उचित देखभाल। साथ ही सुनेगा भेंट वार्ता, गर्मी में पशुओं के रोग और देखभाल। डॉक्टर राम सागर से भेंट करेंगे सत्यव्रत सिंह। संध्या 6:45 पर होगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे लोक कथा।

आज आप सुनेंगे लोक कथा राजा बना तोता। कथाकार होंगे कैलाश कुमार कौशिक। समय रहेगा संध्या 7:05। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:31 से। रात्रि 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 से। सुहाने तरानों का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 9:15 से। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। मिर्ची की फसल सुरक्षा, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, इस मौसम में जो मिर्च आ रही है उसकी रोपाई फरवरी मार्च में की जाती है और मई के मध्य से आप मिर्च लेना शुरू कर सकते हैं। इस समय अधिकांश किसानों के मिर्च के खेत में फूल और फल आ रहे हैं, लेकिन गर्मी फिलहाल इतनी अधिक पड़ रही है जिससे फूल तथा कच्चे फल प्रभावित होंगे। अधिक तापमान और गर्म हवाएं इसकी खेती के लिए हानिकारक होती हैं। अधिक बाष्पीकरण के कारण पौधों में पानी की कमी हो जाती है, परिणामस्वरूप शुष्क और गर्म मौसम में मिर्च के फूल और कच्चे फल तेजी से गिरने लगते हैं। इसलिए तापमान को नियंत्रित रखने के लिए मिर्च के खेत में हमेशा नमी बनाए रखें। इसके लिए 5 से 6 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें, क्योंकि मिर्च की जड़ें उथली होती हैं, इसलिए ये अधिक गहराई से नमी नहीं ले पाती। मिर्च की निराई गुड़ाई फूल आने की अवस्था में कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि इस समय निराई गुड़ाई करने से फूल तथा फलियां गिरती हैं जिससे उपज प्रभावित होती है। फूलों को गिरने से बचाने के लिए खेत में सामान्य नमी तो बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, साथ ही 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स, याद रखें 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स को 4.5 लीटर पानी में घोल करके फूल बनते समय ही फसल पर छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 दिन के बाद करना चाहिए, इससे फसल पर फूल ज़्यादा बनते हैं और जो फूल बने हैं वो जो गिरने की जो समस्या रहती है उससे निजात मिल जाता है। मिर्च की फसल पर कई रोग भी लगते हैं, जिसमें एक रोग है डाईबैक। इसमें पौधों की नई पत्तियां और फलियों पर भूरे धब्बे बनते हैं, टहनियां तथा ऊपरी भाग सूखने लगता है, बीमारी नीचे की ओर बढ़ती है, प्रभावित फलियां फिर से फलियां जो हैं वो गिर जाती हैं। इसके लिए ताम्रयुक्त फफूंदनाशी का छिड़काव करना चाहिए, 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव किया जाता है। मिर्च में एक रोग और लगता है, इसका विशेष रूप से ये देखने में आता है कि मिर्च की जो पत्तियां हैं मुड़ी हुई छोटी छोटी हो जाती हैं। यह रोग मुख्य रूप से थ्रिप्स कीट के आक्रमण से फैलता है, जो पौधों की पत्तियों को खुरच करके रस चूसता है, जिससे पत्तियां सिकुड़ करके ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और इससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इस कीट पर नियंत्रण पाने के लिए कोई भी कीटनाशक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से इंडोसल्फान, मेलाथियान, रोगर, मोनोक्रोटोफास, फॉस्फेमिडान, इनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल करके थ्रिप्स कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर इस पर्णकुंचन रोग से प्रभावित आपके बहुत अधिक पौधे हैं तो इन पर इन दवाओं का छिड़काव किया जाए। अगर कुछ एकाध पौधे हैं तो उनको उखाड़ करके किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए, जिससे कि ये थ्रिप्स कीट और अधिक रोग फैला न सके।
0: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे

मिर्ची की फसल सुरक्षा के विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल सुरों में अभी सुना आपने गीत फिल्म से ये गाना। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से। स्वर किशोर कुमार का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल सुरों में सहरा फिल्म से सुना भी आपने ये गीत। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी, संगीत दिया था रामलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है श्री 420। स्वर लता मंगेशकर और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी के हैं। शब्द शैलेंद्र के हैं, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अपनी सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धन है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।

0: निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
3: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
4: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी, जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा के समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
2: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
6: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम

0: एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे तो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शर्मा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान 2 किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: में पहुंच जाऊं। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: मुंह से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: भैया राधे, कहा भयो कैसे मोड़ो फूलो भयो है? अरे काउ ते झगड़ो टंटो तो ना कर आयो?
1: गाम बस्ती में तो ना भयो है भैया, पर मोह लगे तुम ते जरूर है जावे को।
0: वो काय के लिए?
1: मैंने लाख बार कही है, अब अपनी छोरी बीना को इतना मत पढ़ाओ, इंटर पढ़ ली नहीं है। अरे बहुत है, पर तुम तो बाकू बैरिस्टर बनाए कहीं मानोगे, चाहे गाम बस्ती में अपनी इज्जत खाक में चौना मिल जाए।
0: राधे राधे, एक एक बात बता, आखिर तू कहो का चाह रो है? तेरी बात ने को मतबल मुँह ना समझ में आ रहा हूँ।
1: तुम मतबल बात ना समझोगे, जादना तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी।
2: सच कह रहे हो लाला जी, अब तुम ही समझाओ अपने भैयान को, तुम ही समझाओ। मेरी तो एक ना माने, कल को कोई ऊंच नीच है गई तो आफत है जाएगी। ज्यादा पढ़ लिख गई तो ब्याह के काजे उने दूने रुपया खर्च करवे की आफत जी को जंजाल बन जाएगी। हर तरियों ते मरनो ही मरनो है।
0: अब बहुत सुन ली नी तुम्हारी रामायण, ज्यादा सुनाबे की जरूरत ना है श्यामा।
2: मैं तो पत्थर की मूर्ति ते कैबोय ना चाह रही, पर जब राधे लाला जी बात करते भाई देखे तो इतनी बात कह दी नी मैंने तो।
0: और हाँ राधे, तो कू कछु और कहनो होए तो कह डाल।
1: सुनो भैया, मेरी बात बुरी जरूर लगी होगी, आज के बाद मैं कछु ना कहूंगा तुमते।

0: अरे जा बखत रात को जाने को आएगा, नेग देख के आऊं। रात को बखते ने डंडा उस समय ले लूं, जाने का चक्कर है झाड़िन की रात। और बाबू रात को दूसरों पैर है गो, जाने को दरवाजा खटखटाए रहो, जाने का कले से देख के आऊं। अरे मर यहाँ तो कुत्ता बैठा हो ठंड में सुकड़ के। तुम्हारो
1: कौन हो?
0: अरे को ना भैया, ऐसा लगो कि कोई है तो मैं देख भी गो, माँ तो कुत्ता बैठा हुए।
1: अरे वाह राधे।
0: अरे अब इतनी दूर से मत हंसो, बीना जग जाएगी।
2: वो तो ठीक है, पर मोड़े कोई देखते रहोगे या फिर कछु कहोगे भी?
1: अरे भगवान, कहूं तोकू और राधे को जे तो ना लग रहो कि अपनी बीना का छोरा के संग भाग जाएगी और अपने खानदान की इज्जत को बट्टो लगाई देगी।
0: अरे ना ना ना, ना, ना। देखो मेरे कहवे को मतलब जी ना हो।
1: तो तेरा मतलब जी है कि कोई छोरा बीना को भगाए के ले जाए हो?
0: हाँ भैया हाँ, जई बात सो तो मैं डरू हूँ।
1: बोलो तो तेरी बात को जवाब तो जी है कि अगर घर के भीतर बैठे बैठे काऊ को मौत ना आमती तो शायद को मर तो ही नहीं। सो बू ना है आज तक भयो ना होगो।
2: देखो जी मोई जो कहनो वो तो मैं कह चुकी। वैसे हाँ कहबे ते को फायदो ना है, करोगे तो तुम अपने मन की।
1: ऐसी बात ना है सामा, ऐसी बात ना है। पर तो सच है कि मैं जो कछु कर रहे हूँ जमाने की रीत के मुताबिक ही कर रहे हूँ।
2: अच्छा
0: भाभी देखो, अब को बात ना चली तो भैया ने जमाने की रीत को सहारा ले लिया है, आखिर करेंगे तो मनमानी।
2: और क्या
0: भाभी, मैं तो अब सोए हुए जा रहा हूँ।
2: हाँ हाँ जाओ जाओ भैया जाओ, तुम ही जाओ और तुम्हारे भैया आराम कर लेंगे।
1: एक बात सुनो राधे। हाँ श्यामा। हाँ। तू थोड़ी देर और बैठ जा।
2: अच्छा
1: देख देख भगवान, मैं पागल ना हूं, तुम बड़े भोले हो। को जमानो हो कि हमारे ब्रज में दूध दही की नदी भयो करती कि ना है?
0: हाँ साची कह रही हो भैया।
1: आज कहूँ देखने को मिले का मिले
0: ना, ना, ना, ना, ना, ना। भैया हमारी बात को दूध

0: ते का मतलब जी मेरी समझ में ना आई। न्यो तो पहले या ब्रज में स्नेही की ब्यार कांटिन के करीलन में सुगंध गंध बहती, पर आज वो करील कहाँ है, उनकी जगह पे आखन को चुभती भई कोठी बन गई है, जिनमें नकली गुलाब महके हैं। पर पहले जैसा स्नेह दुलार प्यार अब हम ब्रजवासी में है ही कहाँ है।
1: साची कह रहे हो।
2: बोला बोला, जब इन्हें बातों ने को तुम दोनों ने जवाब ना है तो मैं बीना को चौं पढ़ाए रहूं। जाको अब आज के बाद सवाल मत करियो, मैं तुमसे कह दे रहा हूँ। और अब मैं बिस्तरा पे सोएबे को जा रहा हूँ और तुम सोएबे के काजे जाओ।
1: जा, जा, जा।

0: समय बीत तो गयो, बीना ने बीए पास कर लीनो, बाको विवाह, बैंक में बाबू के पद पर कार्यरत श्याम बिहारी नामक युवक सो है गयो। अब ही विवाह को 2 वर्ष बहे, बीना बेचारी विधवा है गई। आज पहली बार गांव आई है बेचारी अपनी माँ सो, बचपन की सहेली सो बिलक बिलक के गले ते लपट लपट के रोए रही है, अपनी भड़ास मिटाए रही है। बेटी बेटी बेटी बीना, बेटी बीना, मैंने तो कू बेटा की तरिया पालो, पर का अपनी तकदीर को बदनसी भी दे सब कजु बर्बाद कजु अमीरा
1: जामा
0: तू समझाया को
1: अरे मैं डायन बापू मैं डायन हूँ मैं समन को खाए जाऊंगी
0: ना ना ना ना ना ना
1: मेरी सास मुझसे कह रही तो समन ने खाए जाएगी बापू
0: ना है बेटा वो कचू के है पर मेरे काजे तो कलेजे को टुकड़ा है, कलेजे को टुकड़ा है। अरे भैया भाभी हमारी बिना को अब का होएगा। बोल बोल राधे, राधे तू बता और पूछ अपनी भाभी को बिना को का होगा, पूछ अपनी भाभी को।
2: देखो जी जी छोटो मत करो, जा समय हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। और हाँ हाँ बेटी तेरे सास ससुर व्यवहार कैसो है तेरे संग,
1: क्या बताऊँ मैया क्या बताऊँ। जा दिन ते उनकी जगह मुए नौकरी पे रखने की खबर आई है तो देवर की नौकरी को चक्कर लगाए भैया, मैया मेरी कोई ना सोच रहा मैया।
0: राम राम राम राम, कितने गंदे लोग हैं। पर बेटी तेने कहूं दस्तखत तो ना करे हैं, बताइयो
1: ना है बापू दस्तखत तो ना करे।
0: ये तेने अच्छा कियो,
2: ये तो
0: बहुत अच्छा कियो,
2: अच्छा कियो। पर क्यों जी आप तो बता दियो मेरी बीना को का होएगा।
0: बीना की मैया, बीना की मैया, मैं एक दिन तोए और राधे दोनों को एक रात जवाब नहीं दे सको, वो आज दे रहे हूँ, आज दे रहा हूँ। मैंने आज ही के दिना के काजे पीड़ा को इतना पढ़ाया हो, जासो जब जीवन में अंधेरो छा जाए तो वो उनके संग जी सके, सिर उठाए के जी सके। हमारी पीड़ा को गोबर थापवे की लाचारी सो जीवन नाय काटना पड़ेगा, समझ रही है ना? समझ रहा राधे तू?
3: आज वो साची कह रहे हो, तुम साची कह रहे हो।
0: आज वो शिक्षा के बल पे नौकरी हासिल करके स्वाभिमान सो जी सके कि हाँ। क्यों बेटा।

0: बीना, मैं सच्ची कह रहा हूँ ना?
1: हाँ बापू, सही कह रहे हो बापू।
0: श्यामा
2: हाँ।
0: और राधे
3: हाँ भैया,
0: तू कछु तो बोल, तू कछु ना बोले वो।
4: मैं जी सोच रही हूँ पढ़ाई को कितना महत्व है, और हाँ और ई सोच रही कैसो जमानो आयो है। जा जमाने में सास ससुर बजाय बहू की इज्जत के ढकवे के उघाड़वे में लगे हैं, उघाड़वे में। और हाँ देखो, आज मेरी पढ़ी की बेटी है तो देखो नौकरी करके अपना जीवन निकालेगी और खुशी खुशी निकालेगी।
3: सच
4: कह रही हूँ, देखना तुम
3: भैया की बात बिल्कुल सच्ची।

0: कैसो जमानो आयो। अभी आप सुन रहे हैं अजय कुमार शर्मा संतोष की लिखी ये झलकी। या झलकी में भाग लेवे वाले कलाकार है यतीन्द्र चतुर्वेदी, डॉली अरोड़ा, अंशुल शर्मा और मोहिनी आचार्य। या झलकी के प्रस्तुतकर्ता है यतीन्द्र चतुर्वेदी, निर्देशन आर के त्रिपाठी को हो। या झलकी में प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित को हो।
1: और भैया या झलकी के बाद में आओ अब सुने ब्रज लोकगीत। या लोकगीत को स्वर दिया है जगदीश ब्रजवासी ने।

अशोक कुमार मथुरिया के स्वर में अभी सुनो आपने ये लोकगीत और याई के संग अब समय है चलो है आपती अनुमति लेवी को तो स्वीकार करो हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23

0: रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं।

0: इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सेफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को भी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी में। शब्द शैलेंद्र के थे, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है महबूब। स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोसले के हैं। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मैं लोगों के प्यार के किस्से सुन

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को फिल्म नागमणि में। शब्द देव कोहली के हैं, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म खलनायक में। शब्द आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म अग्निसाक्षी से स्वर कविता कृष्णमूर्ति का है।

0: बैनामा रजिस्ट्री तैयार कराते समय सावधानी। डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: सामान्यतः आपने देखा होगा कि कोई भी जमीन जायदाद खरीदते समय, बेचते समय या कोई भी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज लिखाते समय हम एक कानूनी मदद लेते हैं, उसकी कानूनी एक व्यवस्था है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो ये जो डीड है, ये जो बैनामा है, ये जो वसीयतनामा है या ये जो कानूनी प्रक्रिया है, दस्तावेज है, उनमें कुछ बारीकी से अगर ध्यान दिया जाए तो उन पर अगर हम काम कर लें शुरुआत में तो बाद की परेशानी से हम बच सकते हैं। ये क्या कमियां रह जाती हैं और ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं श्री प्रकाश चंद अग्रवाल साहब, आप प्रोफेसर हैं विधि के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: जी। तो ये जो कानूनी दस्तावेज की जब हम बात करते हैं, अगर हम इसकी एक परिभाषा या व्याख्या आपसे जानना चाहें तो ये पूरी प्रक्रिया एक सामान्य व्यक्ति के लिए आप किस तरह कहेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, आवश्यकता क्या है और इसको कराते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
2: किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदना जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कामों में से एक है
1: जी।
2: आप सारी जमा पूंजी, भारी कर्जे और बड़े अरमानों के साथ प्रॉपर्टी खरीदारी का फैसला करते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी सावधानी बरती जाए जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई धोखे से हड़प ना ले। आपको अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदना है उसकी रजिस्ट्री को चेक करना जरूरी है। रजिस्ट्री चेक करने का पर्पस क्या है, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं और उसकी लिंक देखें कि उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी
1: जी,
2: और ये उसका बैनामा कॉपी मंगाएं उसकी, फिर उस जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी, क्योंकि बैनामा करते समय हर बैनामा की लिंक, आप जिस बैनामा को कर रहे हैं, अपने करवा रहे हैं, उसकी लिंक जरूरी है। बिना लिंक के रजिस्ट्री करना गलत है। बहुत से लोग बिना लिंक के रजिस्ट्री करा लेते हैं, वो रजिस्ट्री और सेल डीड में अंतर नहीं समझ पाते
1: जी। कई बार जैसे ये जो दस्तावेज हैं उसमें जानकारी में आते हैं या हम व्यवहार में देखते हैं कि जैसे 12 साल है किसी जमीन का, 30 साल है, तो ये देखने का जो औचित्य और उपयोग है वो यही है कि हमने उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री जानी, उसका इतिहास जाना।
2: हाँ, 12 साल और 30 साल, 40 साल देखना जरूरी है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको 12 साल दिखवाना जरूरी है। 12 साल मींस माने कि जो 12 साल से इस प्रॉपर्टी का कौन, इसका ओनरशिप
1: है,
2: ओनरशिप कौन है।
1: हाँ।
2: क्योंकि प्रॉपर्टी में हम ओनरशिप को ट्रांसफर करवाते हैं, ओनरशिप देखना जरूरी है। 12 साल, 30 साल, जैसे कि आजकल एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, वो नकल खतौनी में उसका नाम दर्ज होता है
1: जी।
2: आपने जिससे खरीदी उसका नाम पुराने रिकॉर्ड में दर्ज होगा, फिर उसने जिससे खरीदी उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज होगा, वो आपको लिंक दिखवाते हैं 12 साल के माध्यम से। वो क्या है कि राज्य सरकार ने एक वेब पोर्टल है भूलेख, जिसमें कि आप सारे रिकॉर्ड दे सकते हो कि प्रॉपर्टी किसके नाम है, कौन सा खाता नंबर है, कौन सा खसरा नंबर है, कितना रकबा है, ये सरकार ने सुविधा दी है
1: जी। यानी उसका एक तरह से स्टेटस जो है उस जमीन का, उस भूमि खंड का जो आप खरीद रहे हैं या जो आपके रजिस्ट्री या बैनामा के उसमें आ रहा है, उसमें जिसको आप खरीद बेच रहे हैं उसमें, तो उसका इतिहास उससे पता लग जाता है कि उसकी जो ओनरशिप है वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर साहब, पहले सामान्यतः अगर हम 20-30 या 50 साल लौट के जाएं तो सामान्यतः जो हमारी जो जमीनें होती थी, हमारे जो रिहायशी मकान होते थे या कोई भूमिखंड होता था, तो बहुत ही सामान्य लिखाई में या कहें बातचीतों में उसका लेन देन हो जाता था। लेकिन अब हर चीज़ को हम लिखते, तो आज अगर रजिस्ट्री हम करा रहे हैं तो उसके कुछ कराने के फायदे हैं, औचित्य हैं, कराना जरूरी है? किसी को जैसे एक बड़ी पूंजी दे के हमने बातों ही बातों में ले लिया या किसी सामान्य स्टैम्प पर लिखवा लिया, तो इस तरह से हम खरीद फरीद तो हमें नहीं करनी चाहिए उस पर?
2: रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 में ये बताया गया कि यदि 100 रुपये से ऊपर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं
1: जी,
2: तो उसका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं बिना रजिस्टर्ड डीड कराए तो आप उसके मालिक नहीं बन सकते। रजिस्ट्रेशन एक्ट में यदि आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपये से कीमत ऊपर है तो उसको बैनामा को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। पुराने समय में क्या था, लोगों का विश्वास था, ईमानदारी थी, वो उस बातों को मानते थे। आज के समय में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत हो गई है, लाखों करोड़ों में होने लगी है, आदमी बेईमान हो जाता है। तो लॉ के अनुसार यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। बिना रजिस्ट्रेशन के उस प्रॉपर्टी का कोई महत्व नहीं है। इस जो बहुत से

0: लोग हैं क्या है, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हमने पैसा दे दिया है और पजेशन ले लिया है, मगर एक्चुअल में क्या है, लॉ की स्टाइल लॉ में लीगल में ये है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको लीगल रेमेडी कोर्ट के माध्यम से नहीं मिल पाएंगी। कोर्ट को यदि लीगल रेमेडी देंगे तो उसका लीगल परफॉर्मा जरूरी है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन बिना लॉ कोई आपको रेमेडी नहीं देगा।
1: जी जी जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे सामान्यतः व्यक्ति रजिस्ट्री और बैनामा दो ही चीज़ों को समझता है कानूनी दस्तावेजों में, हालांकि कई चीज़, तो एक अगर रजिस्ट्री के हम प्रकार जानना चाहें उसमें तो किस किस तरह की डीड होती है, या कहें कि इसको दूसरे रूप में ये जानना चाहूँ कि जो हमारी जो जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका हस्तांतरण एक से दूसरे में किस तरह से होता है, तो उस पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि किस तरह की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जो विधियाँ हैं वो क्या क्या हैं इसमें।
0: प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की निम्नलिखित विधियाँ हैं, एक तो होती है सक्सेशन द्वारा
1: जी,
0: यदि किसी फादर के नाम प्रॉपर्टी है और फादर एक्सपायर हो गए तो उसको सक्सेशन के माध्यम से उनके बच्चों को पहुंच जाती है
1: जी,
0: ये लीगल टर्म्स हैं। दूसरा, यदि हम प्रॉपर्टी को अपने जीवन काल में बेचना चाहते हैं तो वो सेल डीड द्वारा बैनामा होता है, सेल डीड, जो कि सेक्शन 54 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है कि इसका ट्रांसफर कैसे होगा। दूसरा आता है कि गिफ्ट डीड, यदि हम प्रॉपर्टी को सेल ना कर रहे हैं, हम फैमिली मेंबर हैं, उसको एक दूसरे में ट्रांसफर करना चाहते हैं और इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो उसमें क्या, गिफ्ट के माध्यम से सेक्शन 122 में ये बताया गया कि प्रॉपर्टी को किस प्रकार हम गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर देते हैं। इन्हीं दो के माध्यम से आज के समय में प्रॉपर्टी अधिक से अधिक ट्रांसफर हो रही है। तीसरा ये क्या है, यदि कोई प्रॉपर्टी है और वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने जीवन काल में मिल कर जाए किसी अपने बच्चे के नाम या किसी फैमिली मेंबर के नाम, अदर पर्सन के नाम जो उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो आफ्टर डेथ उस बिल के आधार पर उस व्यक्ति के नाम म्यूटेशन हो जाता है
1: जी, ये जिसको हम वसीयतनामा बोलते हैं।
0: हाँ, जिसको वसीयतनामा बोलते हैं। वसीयतनामा एक इच्छा पत्र जो अंतिम होती है वही उसकी वैलिड होती है लॉ के अनुसार, और वसीयत के आधार पर म्यूटेशन कृषि का होता था, घासवा तहसीलदार द्वारा होता है, और यदि आबादी है तो नगर निगम या नगर पालिका द्वारा किया जाता है।
1: जी जी जी। अब इसमें कई बार जैसे बाकी साहब हम देखते हैं कि कोई हम जमीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं तो उसमें एक तो ये देखना है कि उसका हमने हिस्ट्री देख ली, इतिहास देख लिया, जो आप 12 साल 30 साल या 40 साल की बात कर रहे हैं। एक ये होता है कि जो उसकी रजिस्ट्री करने वाला है, जो हमको कर रहा है, उसमें क्या क्या एक तरह से उसकी जो राइट है, मतलब कौन व्यक्ति है जो वास्तव में हमको बैनामा कर सकता है, तो उसकी कुछ वो हैं सावधानियां कि किन किन व्यक्तियों से हमें करा लेनी चाहिए और किन से नहीं करानी चाहिए, कैसे व्यक्ति हैं उसमें।
0: देखो, लॉ में ये चीज है कि आदमी जनरली समझ नहीं पाता टाइटल डीड और सेल डीड में क्या अंतर है। आदमी सेल डीड को टाइटल डीड समझता है
1: जी,
0: मगर सेल डीड और टाइटल डीड अलग है। सेल डीड क्या है, सेल डीड संपत्ति के बिक्री के प्रमाण पत्र है। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई दिखाता है कि ये नाम बैनामा है, वो सेल डीड है, वो टाइटल डीड नहीं है। टाइटल डीड में क्या है, किसी संपत्ति की ओनरशिप होती है। यदि वो टाइटल डीड में क्या है, वो व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी, वो ओनरशिप को ट्रांसफर होता है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है। हाँ। आदमी समझने में कंफ्यूज होता है, सेल डीड को वो ओनरशिप समझ लेता है,
1: ओनरशिप मान लेता है जी।
0: आप बैनामा करते समय पहले आप ये दिखवा लें कि बैंक से एनओसी ले लें कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी एनओसी उस व्यक्ति से ले लें कि भाई ये लोन तो नहीं किसी पे। यदि लोन है तो प्रॉपर्टी को खरीदने से आपको एक
1: कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये बंधक तो नहीं है,
0: ये बंधक नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, इसके एक लोन तो नहीं है, इस चीज को आपको देखना चाहिए, या किसी बेल में जमानत में तो अपनी प्रॉपर्टी लगा दिए, इन चीजों को देखना जरूरी है। तीसरा आता है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं उसकी आईडी प्रूफ ले लें
1: जी,
0: क्या कि प्रॉपर्टी तो किसी के नाम है और कोई फर्जी व्यक्ति बन के बैनामा कर जाता है। आईडी प्रूफ आप लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसको बैनामा से लिंक करें कि जो व्यक्ति आपको बैनामा कर रहा है वही व्यक्ति है, उसी का फोटो है, उसी का नाम है। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति कौन है और कोई बैनामा कर जाता है। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं उसकी आईडी कार्ड, आधार कार्ड लें।
1: अच्छा बाकी सर, इसमें कुछ जैसे खरीदते बेचते समय जो उसका ओनर है वो कुछ चीज़ें छुपा लेता है, जैसे मैं खरीद रहा हूँ लेकिन कुछ चीज़ें तो मैंने ध्यान में दी लेकिन कुछ नहीं दे पाए, तो क्या इसमें एक सही वो बनता है कि जो सेलर है और जो बायर है उसके कुछ राइट हैं उसमें लीगल टर्म में उसमें।
0: देखो, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार बायर और सेलर के राइट और लाइबिलिटी बताई गई है
1: जी।
0: यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी है, वो बायर को सारी जानकारी प्रॉपर्टी के बारे में बताए कि इस प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, इस प्रॉपर्टी पर लोन बकाया है, इस प्रॉपर्टी की पजेशन नहीं है। यदि वो इन बातों को छुपाता है और सेल डीड में नहीं

0: है तो वायर उसके माध्यम को कोर्ट के माध्यम से पूरा कर सकता है।
1: जी
0: इसलिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी में विक्रेता के क्रेता के राइट दिए गए हैं। यदि आप प्रॉपर्टी जो वायर है उसके भी लायबिलिटी है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसकी जो लॉस है हानि को वो देखे और उसका कंसिडरेशन देने का उसकी लायबिलिटी है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी सेक्शन 55 में ये वायर और सेलर के राइट और लायबिलिटी बताई गई है।
1: तो इसमें मतलब ये है कि कम से कम अगर हम साफ को ही रखते हैं, ईमानदारी रख रहे हैं और एक दूसरे को चीजें बता देते हैं, तो आगे चल करके जो होने वाले डिस्प्यूट हैं वो कम हो जाएंगे। ये हमारी कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बेचते और खरीदते समय चीजों को छुपाएं नहीं, जो बाद में जाके एक मुद्दा बनता है उसमें।
0: हाँ, ये हमारे लॉ में भी दिया गया है कि यदि विक्रेता और क्रेता खरीदते और बेचते समय उनमें अपनी सावधानी बरतें और सब चीज़ों को बताएं, यदि
1: जी
0: आप नहीं बताओगे तो लॉ के अनुसार कोर्ट के माध्यम से रिलीफ मिल जाएगा। मगर ये सारा कुछ डिपेंड करता है ड्राफ्टिंग पर।
1: जी
0: आज के समय में क्या है कि हम जो ड्राफ्टिंग है ना, सिर्फ एक जो डीड राइटर है उस पर छोड़ देते हैं।
1: जी
0: यदि आप बहनामा करा रहे हैं और जिस चीज़ की प्रॉपर्टी खरीदे हैं उसकी ड्राफ्टिंग को बड़ी सावधानी से करानी चाहिए। आज के समय में क्या है कि हम ड्राफ्टिंग बहनामा गए और बहनामा करके आ गए, हमने सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीद ली। नहीं, आप जो सेल डीड कर रहे हैं उसको पहले ड्राफ्ट करा, उसको समझो, पढ़ो, उसके सब कुछ देखो। आजकल क्या कंसीडरेशन, बहुत से कह देते कि नगद प्राप्त कर लिया, नगद दे दिया। नहीं, नगद मत दो, कंसीडरेशन आप चेक से, डीडी से, आरटीजी से
1: जी
0: देना मैंडेटरी है। यदि आप नहीं दोगे, आपने किसी को नगद दे दिया, तो वो आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाओगे।
1: जी
0: ये
1: जी
0: मैंडेटरी है कि आप जो कंसीडरेशन दो उसे आप चेक से, डीडी, आरटीजी से दीजिए।
1: और जो वाकई में जो ओनर है वो उससे ये ताकीद कर लें कि वो जो पैसा है वो उसी को जा रहा है,
0: हाँ
1: बाद में वो ओनर ये नहीं कहे कि मेरे को मिला नहीं
0: हाँ
1: उसमें। तो जो मध्यस्थ जो लोग होते हैं, कई बार जो उसको फाइनल करवा रहे होते हैं उस डीड को, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए उतना,
0: हाँ ये
1: खुद आश्वस्त हो जाना चाहिए उसमें।
0: हाँ आपको यदि बहनामा करा रहे हो तो आपको खुद जिम्मेदारी है कि वो पैसा आप उस व्यक्ति को दें
1: जी
0: जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। इसलिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रोविजन डाले हैं कि आप इनकम टैक्स में भी ये बताया कि आप सारा पैसा चेक से, डीडी से, आरटीसी से ट्रांसफर करें। आप नगद दोगे तो उसकी लायबिलिटी आपको सिद्ध करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लॉ में आप कहाँ हैं, आप सिद्ध
1: हाँ,
0: करोगे कंसीडरेशन मैंने दे
1: किन
0: दिया
1: परिस्थितियों में
0: कि
1: ये ऐसा
0: ऐसा
1: हुआ।
0: हुआ कि मैंने आपने नगद दिया। इसलिए आप बैनामा कराते समय आप उसे चेक से, डीडी, आरटीजी से दीजिए।
1: जी, एक गिफ्ट डीड की आपने बात की थी, पारिवारिक संबंधों में हम कई बार गिफ्ट डीड कर देते, तो इसमें भी कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्या
0: देखो,
1: इसमें?
0: गिफ्ट डीड ऐसा होता है, ये फैमिली मैटर में होता है। इस दस्तावेज के तहत बिना पैसे के लेन देन से आप अपनी चल अचल संपत्ति को गिफ्ट कर सकते हैं। आपको स्टाम्प पेपर की ड्यूटी देनी पड़ती है, जो
1: जी
0: कंसीडरेशन है वो ट्रांसफर नहीं होता, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। यदि ऐसे ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी का गिफ्ट हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार, 17 के अनुसार से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
1: जी
0: और वो मूवेबल है, जैसे ज्वेलरी है, कार
1: हाँ
0: है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। आपने गिफ्ट किया, जिसको गिफ्ट किया वो स्वीकार कर ले, इतना ही सफिशेंट होता है। मगर क्या है कि गिफ्ट और सेल डीड में अंतर यही है कि गिफ्ट में क्या है कि स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है मगर कंसीडरेशन बच जाता है, और सेल डीड में क्या है, स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है और कंसीडरेशन देना पड़ता है, इनमें दोनों चीज देनी पड़ती है।
1: जी, कई बार वसीयत को लेकर भी बहुत सारे विवाद होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के नाम कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाना चाह रहा है, वसीयत करना चाह रहा है, तो उस वसीयत की लीगलिटी बाद में जाके सिद्ध हो सके, तो इसको करते समय क्या क्या थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए?
0: बिल करते समय हमको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
1: जी
0: यदि हम बिल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो फ्यूचर में उसमें टिपिकल प्रॉब्लम आती है।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत, बैनामा रजिस्ट्री तैयार कराते समय सावधानी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
1: बिजनौर में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी तेज हो गई है। स्वयं जनगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 के बीच

0: नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। जनगणना का मुख्य प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए 9 मई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 13,000 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों में समझौते के आधार पर करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई। जिला जज ने आम जनमानस से अपील की कि वे सुलभ न्याय के लिए लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाएं।
1: इन लिटिगेंट्स के सुविधा के लिए ऐसे मामले जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है। विवादकारी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने वाद निस्तारित करें। पिछली बार की लोक अदालत उस लोक अदालत में जनपद बिजनौर में लगभग 14,000 के आसपास वाद निस्तारित हुए थे एक दिन में, तो इस बार भी हम यह आशा करते हैं कि उसको क्रॉस करेंगे।
0: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद की होनहार छात्रा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान सांकेतिक डीएम के तौर पर छात्रा ने कलेक्ट्रेट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में प्रशासनिक नेतृत्व की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली पूर्व राज्य मंत्री ओमवती देवी का निधन हो गया। वह नगीना विधानसभा से 4 बार विधायक और 1998 में बिजनौर से सांसद रही। 9 मई को हुए उनके निधन से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर और विधायक मनोज पारा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इकाई की स्थापना की गई है। इस नई मशीन के आने से अब मरीजों को बड़े चीरे वाली सर्जरी के बजाय छोटे छेद के माध्यम से सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। मशीन का औपचारिक उद्घाटन सदर विधायक और जिलाधिकारी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीम उपस्थित रही। स्थापित की गई मशीन अत्याधुनिक 4K अल्ट्रा HD विजन सिस्टम से लैस है। मशीन की विशेषताओं के बारे में महात्मा विदुर राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर तुहिन वशिष्ठ ने बताया।
2: सरकार ने ये मशीन उपलब्ध कराई है लेप्रोस्कोप। इसके द्वारा अब क्या होगा कि सिर्फ छोटे से चीरे लगा के दूरबीन के द्वारा हम पेट के अंदर के सभी ऑपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि क्या फायदा होगा, पहले चीरा लगता था बड़ा, उससे खून भी ज्यादा बहता था, उसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते थे, दर्द ज्यादा होता था मरीज को। अब क्या होगा कि छोटा सा चीरा लगेगा, अगले दिन छुट्टी होगी, खून भी कम बहेगा और इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे।
0: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय पोषण सलाहकार नोरा होप ने जनपद बिजनौर के विकास खंड नूरपुर स्थित THR ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय विद्युत प्रेरणा उत्पाद प्लांट का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इस समग्र मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्वितीय प्रेरणादायक और विश्व स्तर पर अनुकरणीय अनुभव बताया। निरीक्षण के दौरान सुश्री नोरा ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चालित उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और लाभार्थियों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि THR प्लांट में महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि निर्णायककर्ता, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित है। सुश्री नोरा ने कहा कि भारत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत और प्रेरणादायक मॉडल देखा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की नेतृत्वकर्ता हैं। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण को जिस आत्मविश्वास और दक्षता से संचालित कर रही हैं, वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी किया कि पिछले वर्ष रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा THR प्लांट की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट का संचालन करते हुए दिखाया गया था।
3: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख है अम्मार रिजवी का।
4: श्रावस्ती में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वगणना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले 7 से 21 मई तक

0: स्वगणना होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपेक्षित तैयारियां समय रहते ढंग से पूरी करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना का भी प्रावधान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील इकौना सभागार में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अधिकांश पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष लाभार्थियों को शीघ्र आच्छादित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा ग्राम पझरिया में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों, श्रम कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने बताया कि देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जनपद श्रावस्ती में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती में कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एनआरसी में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को 50 रुपए प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन और भर्ती बच्चों को डायटिशियन के हिसाब से दलिया, खिचड़ी और हलवा उपलब्ध कराया जाता है। एनआरसी के चिकित्सक डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने बताया कि केंद्र पर भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयां, चिकित्सा प्रबंधन और विशेष पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है। माताओं और देखभाल करने वालों को बच्चों के उचित खानपान, साफ सफाई और सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भर्ती बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और लंबाई की जांच की जाती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए एनआरसी में एक प्ले एरिया की सुविधा भी है। उन्होंने जनपद वासियों से आग्रह किया है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे जनपद का कोई भी बच्चा कुपोषित न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय जनपद भ्रमण के लिए विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर पहुंची। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। जब तक नारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी, तब तक समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो निश्चित ही समाज सशक्त होता है और राष्ट्र प्रगति करता है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी ने विकासखंड जमनोहा के अंतर्गत कई गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र क्रमशः बहुद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति लक्ष्मणपुर सिमरहिया, साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिकारी चौड़ा और महादेवा नासिरगंज का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय करने आए किसानों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। गेहूं बेचने आए किसान भाइयों के लिए क्रय केंद्र पर आने जाने का रास्ता और वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आबोहवा के अंतर्गत वार्ता, संतुलित पर्यावरण मनुष्य की आवश्यकता। वाचन कर रहे हैं राजेश महावर।
3: सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीजों को

उसका पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। किंतु यहाँ यह भी ध्यान रहे कि अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानती और उसकी नजर में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है। वस्तुतः मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं जो तकनीकी रूप से विकसित हैं और विज्ञान और तकनीक के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफी बदलाव लाने में समर्थ हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो प्रखंडों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक यानी नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल न हुआ हो या पूर्ण रूपेण मानव निर्मित पर्यावरण जिसमें सब कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित हो कहीं नहीं पाए जाते। ये विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का सूचक मात्र है। परिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास के लिए भी होता है। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था या प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह की समस्याएं पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं। और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा है। मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों से नुकसान को कम करने में कितना सक्षम है, आर्थिक और राजनीतिक हितों की टकराहट में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्यता अपने पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक है, ये आज के ज्वलंत प्रश्न है। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए हैं। प्रकृति और भूगोल में यह शब्द अंग्रेजी के एनवायरमेंट के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट स्वयं प्राकृतिक अर्थ में काफी बाद में प्रयुक्त हुआ और ये शुरुआती दौर में आसपास की सामान्य दशाओं के लिए प्रयुक्त होता था। आज पर्यावरण एक जरूरी सवाल बल्कि ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, लेकिन आज लोगों में इसे लेकर कोई जागरूकता नहीं है। ग्रामीण समाज को छोड़ दें तो भी महानगरीय जीवन में इसके प्रति खास उत्सुकता नहीं पाई जाती। परिणाम स्वरूप पर्यावरण सुरक्षा महज एक सरकारी एजेंडा ही बनकर रह गया है, जबकि ये पूरे समाज से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला सवाल है। जब तक इसके प्रति लोगों में एक स्वाभाविक लगाव पैदा नहीं होता, पर्यावरण संरक्षण एक दूर का सपना ही बना रहेगा। संपूर्ण विश्व एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। यद्यपि हमारे पास पर्यावरण संबंधी पाठ्य सामग्री की कमी है, तथापि संदर्भ सामग्री की कमी नहीं है। वास्तव में आज पर्यावरण से संबद्ध उपलब्ध ज्ञान को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि समस्या को जनमानस सहज रूप में समझ सके। ऐसी विषम परिस्थिति में समाज को उसके कर्तव्य और दायित्व का एहसास होना आवश्यक है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में वार्ता का विषय था संतुलित पर्यावरण मनुष्य की आवश्यकता। वाचन कर रहे थे राजेश महावर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रहे हैं जितेंद्र सिंह।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं, तो आज हम बात करेंगे व्यक्ति के एक ऐसे गुण की जो रिश्तों को टूटने से बचाता है, मन को शांति देता है और इंसान को महान बनाता है, और वो है क्षमा मांगना और क्षमा करना। मित्रों, इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। कभी कभी हम आवेश में आकर या भूलवश ना चाहते हुए भी किसी से कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कोई ऐसी गलती कर बैठ जाते हैं और बाद में उसका हमको पछतावा भी होता है। लेकिन गलती के बाद मुझे माफ़ कर दीजिए, ये कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि क्षमा मांगने के लिए अहंकार की नहीं बल्कि साहस की ज़रूरत होती है। और दूसरी ओर किसी को दिल से माफ़ कर देना भी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि जहाँ क्षमा होती है वहाँ जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को दिल में रख लेते हैं, गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना हमारे अंदर पनपती रहती है और हम उससे परेशान होते हैं, लेकिन क्षमा यानी माफ़ी हमारे मन को शांति देती है। और इस बारे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकते, क्योंकि क्षमा करना तो एक शक्तिशाली व्यक्ति का गुण होता है। इसलिए हम भी अपने इस बात को, इस गुण को अपने जीवन में अपनाएं और संकल्प लें कि अगर हमसे गलती हो तो बिना संकोच के हम क्षमा मांगेंगे, और किसी से अगर कोई भूल हो जाए तो बड़े दिल से उसे क्षमा भी करेंगे, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई बदला नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं। और इस बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, गलती करके झुक गया वही बड़ा इंसान, क्षमा मांगना सीख लो बड़े सभी सम्मान।

0: श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार को कैसे पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कहाँ अस्पताल की आवश्यकता है, कहाँ सड़क की जरूरत है? तो इसका जवाब है जनगणना, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के हर व्यक्ति से विभिन्न तरह की जानकारियां जुटाई जाती हैं और ये जानकारियां योजनाएं बनाने में, देश के विकास में काफी सहायता करती हैं। और उत्तर प्रदेश में आगामी 22 मई से जनगणना शुरू हो रही है। आज इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं मथुरा क्षेत्र के जनगणना के नोडल अधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार त्यागी जी, और आपसे बात कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: सर, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मथुरा के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो ये जो कार्यक्रम हम जनगणना 2027 करने जा रहे हैं और डिजिटली ये पहली बार हो रहा है और ये काम लगभग शुरू भी हो चुका है कि सेल्फ नॉमिनेशन करके व्यक्ति कर सकता है, तो यहीं से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के पूरी उसके पीछे का जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है उसके कुछ उद्देश्यों पर आप प्रकाश डालें, और एक व्यक्ति को पहली बार डिजिटली जोड़ा गया है तो कैसे इसमें अपनी सहभागिता निभा सकता है, कैसे जुड़ सकता है, इस पर भी।
2: बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिसकी जनगणना जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और हमारी जनगणना के जो कार्य को दुनिया में एक बहुत बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक माना जाता है। इलेक्शन के कार्य रहते हैं लेकिन जनगणना का भी कार्य जो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होता है, ये 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई थी और ये जो अब हो रही है जनगणना 2027, ये 16वीं है और आजादी के पश्चात ये 8वीं है। और इससे पहले 2011 में हुई थी, 2011 के पश्चात 10 वर्ष पश्चात 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई थी, अब ये 2027 में हो रही है। जनगणना का इसलिए बहुत महत्व है कि ये हमारी बहुत विश्वसनीय मानी जाती है। इसके जो आंकड़े हैं, चाहे मनुष्य से संबंधित हैं, प्रत्येक मनुष्य की इसमें गणना होती है, साथ साथ जो उनकी स्थिति है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, उनके मकानों की, मकानों में क्या स्थिति है, उन सब के जो आंकड़े हैं वो हमारे देश के योजनाकारों को, हमारे जो प्लानिंग होती है उसके लिए कहाँ कहाँ किस प्रकार हमको आगे प्लानिंग करनी है, शौचालयों की क्या स्थिति है, पानी पीने की क्या सप्लाई की स्थिति है, जो नालियों की स्थिति है वो क्या है, या जो शैक्षिक स्थिति है वो क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, बूढ़ों की स्थिति क्या है, इतने अच्छे आंकड़े इससे प्राप्त होते हैं। चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं चाहे प्राइवेट संस्था हैं, सबको इनके आंकड़े की बहुत अच्छी आवश्यकता रहती
1: जरूरत है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो लक्ष्य रखा है कि 2047 जब देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाए और जब हम एक विकसित राष्ट्र के तौर पे देखे जाए, समझे जाए, जाने जाए या माने जाए, तो उसमें इन छोटी छोटी चीजों का भी बड़ा योगदान होगा।
2: बिल्कुल, इनका योगदान ये है कि एक तरह से ये गणना है, जनगणना, तो इसमें जो गणना होती है उसके आंकड़ों का बहुत महत्व है। और हमारी जो जनगणना है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी, उसके आंकड़े बड़े विश्वसनीय माने जाते हैं। इस

0: बार ये थोड़ा सा हुआ है कि डिजिटली ये जनगणना होगी और इसमें जैसे प्रत्येक एरिया है, एक जोन बनाए गए हैं, उसके चार्ज अधिकारी होते हैं, उसमें ब्लॉक बनाए गए, वो तो जो एक ब्लॉक बनाए गए हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, मकान सूचीकरण ब्लॉक, तो वो लगभग 150 से 190 के लगभग उसमें मकान रखे गए हैं। जनगणना वास्तव में मकानों की गणना है, उसके स्वामित्व का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे कोई भी आदमी अपने मकान में भी रह सकता है, किराए के में भी रह सकता है, कैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन उसकी मकानों की हमको गणना करनी होती है और मकान में जो भी निवास कर रहे हैं मनुष्य उनकी गणना करनी होती है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, या जो भी स्थिति है। तो एक परिवार की का एक माना जाता है, और परिवार का मतलब है एक किचन, एक रसोई, एक रसोई जिसमें जो परिवार के लोग खाना खाते हैं। तो अगर एक से अधिक रसोई है तो दो परिवार माने जाते हैं। जो प्रगणक हैं वो 22 मई से आपके यहाँ पे आएंगे और वो आपको बताएंगे, उसमें 33 प्रश्न हैं, ये ऑनलाइन ही होगी, जो मोबाइल ऐप में वो भरा जाएगा, वो आपको दिखाएंगे जो आएंगे प्रगणक। अगर आप सेल्फ एनुमरेशन करना चाहते हैं, स्वयं गणना करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है, गणना है, मकानों की स्थिति क्या है, ये उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, ना उसमें आपका स्वामित्व पूछा जाता है, मालिकाना हक पूछा जाता है, किसका है, कैसा है, वो नहीं पूछा जाता। उसमें बस ये पूछा जाता है कि मकान की छत कैसी बनी है, पक्की है, कच्ची है, फर्श कैसा है, फर्श ईंटों का है, कच्चा है, मार्बल का है, और पानी की सप्लाई है, बिजली।
1: जैसे बहुत से लोग किरायों पे रह रहे हैं
0: जी,
1: या जैसे बहुत सारे सर्विस पे हैं, उनका रहने वाले, मान लो कोई मथुरा का बासिंदा है, दिल्ली की सर्विस कर रहा है, या कोई दिल्ली का रहने वाला है, कहीं लखनऊ में काम कर रहा है, तो वहाँ जो किराए पे रह रहा है तो वो वहाँ रह के कराएगा उसको, या यहाँ पे कराएगा?
0: नहीं, बिल्कुल, इसमें ये है कि ये गणना है, तो जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है, जहाँ पे निवास करता है, और निवास का मतलब माना जाता है कि जहाँ पे रात्रि विश्राम करता है, तो जैसे यहाँ पे रहता है लेकिन सर्विस करने किसी दूसरे शहर में जाता है, तो उसका निवास यही माना जाएगा, मथुरा में माना जाएगा,
1: मथुरा में माना जाएगा,
0: तो वो किराए पे भी हो सकता है।
1: हाँ, जहाँ का निवासी है वहाँ उसको जनगणना करानी है उसको।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: जनगणना का जो ये प्रथम चरण स्टार्ट हो रहा है, ये 7 मई से स्टार्ट हो चुका है, 7 मई से 21 मई 2026 तक ये स्वयं गणना का ये समय है, 15 दिन का। तो स्वयं गणना में ये पहली बार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान की गणना स्वयं जो है उसकी सूचना अपने मोबाइल में फीड कर सकता है।
1: जी,
0: तो इसका ऐप है, क्योंकि जो हमारे प्रगणक होंगे, एनुमरेटर होंगे, वो अपने मोबाइल से करेंगे, और जो व्यक्ति स्वयं अपने मकान की गणना स्वयं करना चाहता है वो अपने मोबाइल से करेगा।
1: जी, तो एक तरह से जो प्रगणक है उनका काम आसान कर जाए।
0: हाँ, ये जो है पेपर विहीन, कागज विहीन, ये एक जनगणना है,
1: एक्सरसाइज,
0: और ये पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि
1: कागज नहीं लगाना,
0: कागज नहीं लगाने हैं। जैसे 2000 की जनगणना हुई थी उसमें बहुत ज्यादा कागज, अब सब कुछ ऐप पे है, मोबाइल पे है, इसका ऐप है, आपको अगर करना है तो आप उसमें खोलेंगे। ये मैं बता देता हूँ, ये SE.census.org.gov.in, यानी कि आप गूगल पे जाके अगर SE लिखेंगे, SE का मतलब है सेल्फ एनुमरेशन, तो ये उसके लिए है जो जिसको स्वयं अपने मकान की जो है गणना करके उसको फीड करना है अपने ऐप पे। तो गूगल पे आप लिखेंगे SE तो तुरंत उसमें आ जाता है SE.census.org.gov.in, वो अपने आप आ जाएगा, उसको आप टच करेंगे, टच करके उसमें जो है वो ऐप ओपन हो जाता है, और उसमें सबसे पहले जो प्रदेश का नाम पूछता है, आप उसमें उत्तर प्रदेश जो है उसमें सब कुछ सूची आती है, आपको टाइप जो है बहुत कम करना है, जैसे अपना नाम आपको टाइप करना, मोबाइल नंबर आपको उसमें टाइप करना है, अपना ईमेल नंबर डालना है, तो ये चीजें तो ऐसी जो आपको टाइप करनी है, लेकिन बाकी जितने प्रश्न हैं उनके ऑप्शन आते हैं
1: जी।
0: जैसे मकान के संबंध में आएगा कि मकान का क्या उपयोग है, जैसे मकान आवासीय भी हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, कोई शैक्षिक संस्थान हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, ऐसी मकान कच्चा है, पक्का है, उसकी छत कैसी है, तो उसमें ऑप्शन आएंगे।
1: मतलब जो 33 प्रश्नों की संख्या है जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें घर का टाइप है, घर की स्थिति है, परिवार में रहने वाले लोगों के क्या

0: की चीजों
1: बिल्कुल
0: का उपयोग कर रहे हैं, उसमें किस तरह
1: बिल्कुल
0: का स्टेटस है, तो इन सब चीजों से एक व्यक्ति का रहन-सहन, उसके जीवन स्तर और
1: बिल्कुल
0: जो चीजें जिनसे हम आगे की भविष्य की योजनाएं बना रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, वो
1: बिल्कुल।
0: सब इसके पीछे का उद्देश्य है।
1: इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं ये केवल आंकड़ों के लिए हैं, इनका कहीं वैसा उपयोग नहीं है कि कहीं पे इनका उपयोग किसी भी प्रकार से दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में किया जा सके।
0: जी जी
1: इसका जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी इस चीज को स्पष्ट किया गया है, और ना ही इसमें कोई आपको साक्ष्य प्रस्तुत
0: जी
1: करना
0: मतलब
1: है।
0: आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो व्यक्तिगत रहेगी, आपके
1: व्यक्तिगत
0: लिए रहेगी
1: बिल्कुल,
0: और गोपनीय है,
1: वो गोपनीय
0: उस
1: है
0: डाटा का कोई पर्सनल
1: बिल्कुल
0: यूज नहीं कर पाएगा।
1: बिल्कुल, कोई उसका पर्सनल यूज नहीं कर पाएगा। कहीं पर्सनल क्या उसका कहीं भी किस तरह से ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा निजी रूप में, उसके केवल सरकारी आंकड़े हैं सरकार की योजनाएं बनाने के लिए, और जो संस्थाएं हैं उनको उसका इस्तेमाल होता है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो सेल्फ एनुमिरेशन जो है वो एक ऐसी है कि उसमें आम जनता को भी इसमें जोड़ा गया है। जो जागरूक लोग हैं और सामान्य रूप से शिक्षित व्यक्ति हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, उसमें ऐप में जाकर अपने मकान की स्थिति फीड कर सकते हैं। उसमें गूगल से जो लोकेशन है वो भी ओपन हो जाती है,
0: जी जी
1: और उससे वो आपके मकान की लोकेशन ले लेगा,
0: हाँ
1: उस ऐप से फीड कर देगा, उसमें प्रश्न आते जाएंगे, और प्रश्न का जो विवरण है यानी कि किसी प्रश्न को अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो उसकी डिटेल भी दी गई है, और उसके ऑप्शन दिए हैं प्रश्नों के, उनके ऑप्शंस को आपको टच करना है। जैसे कि फर्श पूछा गया है तो फर्श जो है किस प्रकार का है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, कच्चा है, पक्की ईंट का है, या कोई टाइल्स का है, तो उसमें ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन को छूना है, टच करना है। और ये 33 प्रश्नों के पश्चात में सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट जो है टच करेंगे तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है सेल्फ एनुमरेशन का, स्वयं गणना का, और वो उस सेल्फ एनुमरेशन का जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जब पूरा हो जाए तो उसमें आएगा, वो आपको रखना है अपने पास में, और जब प्रगणक आपके पास में आएगा तो उस नंबर को देना है। तो प्रगणक उस नंबर को अपने मोबाइल में ऐप में फीड करेगा तो वो अपने आप उसके मोबाइल में ओपन हो जाएगा और वो उसका सत्यापन करेगा।
0: जी मतलब एक तरह से आपने जो काम किया उसको वेरिफिकेशन करके नेक्स्ट फेज उसको
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ा दिया
1: इसमें
0: जाएगा।
1: गणना, जनगणना में स्वयं अपनी भागीदारी करके आदमी को अच्छा लग सकता है, और इसमें उस एक तरह से उसका योगदान भी है, और क्योंकि बहुत इजी है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसमें 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में,
0: और अपनी जानकारी आपको चूंकि ठीक से पता है तो आप ठीक से उसमें फीड
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, और
1: बिल्कुल
0: सिस्टम का और जो हमारी व्यवस्था है उसके हाथ मजबूत कर
1: ये
0: सकते
1: ऐप
0: हैं।
1: इतना इजी बनाया गया है हैंडल करना, यूज करना, और प्रत्येक प्रश्न के संबंध में डिटेल भी दिया हुआ है, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसका विवरण दिया हुआ है, उसको पढ़ के भी उसमें कर
0: जी
1: सकते। इसमें ऐसा है ये दो स्टेप में है, दो चरणों में है। अभी जो पहला चरण स्टार्ट हुआ है 7 मई से और ये 20 जून तक रहेगा, इसमें केवल मकानों की गणना होगी, मकान सूचीकरण होगा, यानी कि मकान आपका कैसा बना है, कच्चा है, पक्का है, शौचालय कैसा है, इसमें केवल जो मुखिया का नाम दिया जाता है और परिवार के कितने सदस्य हैं उनका वो संख्या लिखी जाती है, बाकी जो मनुष्यों की जो गणना है या आदमियों के बारे में जो डिटेल जो जानकारी है, इसका जो दूसरा चरण होगा जो फरवरी 2027 में होगा। अभी इसका जो नाम है इस प्रथम चरण का वो मकान सूचीकरण एवं मकान गणना, यानी कि कितने मकान हैं और मकान जो है कैसे बने हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं उनके अंदर है।
0: जाति गणना भी हो रही है क्या इसमें?
1: अभी जो ये प्रथम चरण है
0: हाँ,
1: इसमें नहीं है, जो 2027 वाली आएगी उसमें होगा, लेकिन इसमें एक प्रश्न ये है, इसमें ये पूछा जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि आपकी कैटेगरी एससी एसटी या ओबीसी में है
0: जी, जी।
1: तो उसमें 3 ऑप्शन है, यानी कि अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है या फिर अन्य में है, यानी कि 3 ही ऑप्शन है, तो उसमें केवल एससी की एक तरह से गणना है, एसटी की है और बाकी सब अन्य में आ रहा
0: अन्य
1: है।
0: में
1: ये जस्ट इसमें टच करना है तो टच करने से ये आ जाता है कि आप किस चीज में हैं,
0: किस वर्ग में हैं,
1: किस वर्ग में
0: है, जाति आपको नहीं है, वर्ग एक तरह से
1: बस,
0: पूछा जाएगा
1: बस,
0: और वो भी चूंकि बहुत सारी चीजों के लिए कैटेगराइजेशन पहले से हो रखा है, बहुत सारी सुविधाओं का, बहुत सारी योजनाओं का एक लाभार्थी वर्ग है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एससी एसटी और ओबीसी, इस समय 3 ही, ओबीसी नहीं बल्कि अन्य अदर, तो इस पे आपको टिक करना है और ये फिर आगे आपका

0: चला जाएगा इसमें। तो श्रोताओ, आप थे श्री राकेश कुमार त्यागी जी, सहायक आयुक्त नगर निगम मथुरा क्षेत्र के, नोडल अधिकारी भी हैं, इस कार्य के जो जनगणना 2027 का चल रहा है जानकारी दे रहे थे। और आपको समझ में आ गया होगा, मेरी भी समझ में आ गया कि ये स्वामित्व का प्रश्न नहीं है, स्वामित्व की गणना नहीं है, मकान की है। और मकान किस तरह का है, उसमें क्या सामान है, आपके जीवन स्तर कैसा है।
1: बस मैं एक लास्ट में एक अपील करना चाहूंगा।
0: जी जी, बिल्कुल, स्वागत है।
1: मेरा ये निवेदन है सभी से कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके अपने इसको सेल्फ एनुमरेशन के माध्यम से, स्वगणना के माध्यम से इसमें जुड़ें और अपना योगदान दें।
0: तो श्रोताओं, ये राष्ट्र का काम है, हमारे एक उत्तरदायित्व का काम है, और उत्तरदायित्व तो हमें राष्ट्र के निर्माण में हमारी सहभागिता निभाने का एक अवसर है। तो इस कार्य को उसी रूप में लें, और इस कार्य में अगर आप

0: अवसर है, तो इस कार्य को उसी रूप में लें और इस कार्य में अगर आप जुड़ पाएंगे तो देश का और समाज का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज हमारे साथ सर आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

सुरक्षा नियमों का हम पालन करें। भीड़भाड़ वाले स्थान पर वाहन को तेजी से नहीं चलाएं और ऐसे स्थानों पर एक गति सीमा निर्धारित रहती है उस गति सीमा के अंदर ही वाहन को चलाएं, क्योंकि जब हम तेज गति से वाहन चला रहे होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति या अन्य कोई वाहन हमारे सामने आ जाए तो उस स्थिति में वाहन को नियंत्रित कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अक्सर दुर्घटनाएं तेज गति की वजह से हो जाती हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, यानी स्पीड लिमिट का हमको विशेष ध्यान रखना है और वाहन को नियंत्रित गति के अंदर ही चलाना है। और इसी के साथ एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी दुर्घटनाएं होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं, जो कि कई बार खतरनाक साबित होता है, क्योंकि मोबाइल पर बात करते समय हम पूरा ध्यान वाहन चलाने पर नहीं दे पाते और ज़रा सा ध्यान भटकने पर दुर्घटना हो जाती है। अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल अटेंड करनी है तो वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके आप आराम से बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी नींद आने या थके होने की स्थिति में वाहन को नहीं चलाएं। और इसी के साथ कभी भी अपने वाहन को जल्दबाजी में ओवरटेक नहीं करें। और दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का इस्तेमाल करें और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का अवश्य इस्तेमाल करें। बस इन कुछ सड़क सुरक्षा नियमों का आपको ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तो आज की खबरों में है कि गंगा दशहरा पर्व पर यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साफ सफाई, मरम्मत और सजावट पर भी जोर दिया गया है। नगर आयुक्त जग प्रवेश की अध्यक्षता में भूतेश्वर स्थित नगर निगम कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर बैरिकेटिंग, चेंजिंग रूम, गोताखोर और स्टीमर की व्यवस्था करने के लिए कहा है। कल से शुरू होगी ब्रज 84 परिक्रमा। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा अब कल से प्रारंभ होगी। परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी श्री सीपी सिंह ने बताया है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। और बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि यानी 16 मई इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। सिक्किम प्रतिवर्ष इसी दिन अपना राज्य दिवस मनाता है। और आज ही के दिन सन 1975 में जापान की जुनको ताबी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। और आज ही के दिन सन 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो मित्रों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

और साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे ये अपील करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि सड़क पर सुरक्षित चलें और चलने दें, क्योंकि सड़क पर सुरक्षित चलना हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर हम तेज़ गति से या लापरवाही से अपने वाहन को चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इस लापरवाही की वजह से अन्य लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन को खतरा हो जाता है। इसलिए अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि यातायात व सड़क

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रहे थे जितेंद्र सिंह, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अरुण कुमार तिवारी का राग अहीर भैरव में निबद्ध सितार वादन, तबले पर संगत गुलाम साबिर की है।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अरुण कुमार तिवारी का राग अहिर भैरव में निबद्ध सितार वादन। तबले पर संगत गुलाम साबिर की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय से नाटक बड़ी साध्वी चंदनवाला। आलेख लोकेंद्रनाथ कौशिक का है। प्रस्तुति दे रहे हैं हरीश त्रिहान।

0: भाई भगवत शरण, हमारे नगर सेठ ने जो नई दासी खरीदी थी, सेठ के इस प्रासाद में उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, ये तुमने सुना?
1: नहीं भाई, अपनी आदत से है, हमें काम तो तुम्हारा है, तुम तो आकाश से पाताल तक की दूरी रखते हो।
0: हमने तो उसकी खबर सुनी थी, तो तुम भी सुना रहे हैं?
1: ये तो सुनाओ ना। वैसे हमारे समाज में दासियां तो बिकती नहीं है दुर्दशा कराने के लिए,
0: परंतु ये बेचारी तो 32 दांतों के बीच में जीव की तरह रह रही है। सुना है सेठ जी की पत्नी उस पर मनमाने अत्याचार करती है। अरे भाई, और कौन कहेगा, सेठ के घरेलू कर्मचारियों से ही सुना कि जिस दिन से वो अभागिन षोडशी दासी सेठ के इस आवास में आई है, उसी दिन से सेठानी की आंखों का कांटा बन गई है कांटा। परंतु धनवा से व्यय की गई स्वर्ण मुद्राओं पर पानी नहीं फिरने देना चाहते।
1: बड़े भोले हो बच्चू, उसका लोन अपनी मुद्राओं से नहीं, उस सुरक्षित आदमी से है जिसे बुढ़ापे में सुख देने के लिए।
0: शांतम पापम, शांतम पापम, ऐसा न कहो बंधु, हमारे नगर सेठ तो ऐसे मनोविकारों से ऊपर हैं।
1: परंतु अनिल सेठानी के लिए नहीं बाकी, ये तो नई दासी का रूप और यौवन अपने लिए धार्मिक भक्ति का रूप दिखाई देता है बंधु, तुम तो हर बात को।
0: अरे छोड़ो भी मित्र, हमें इस विवाद में पढ़कर क्या लेना देना है, आओ चलें।
2: स्वामी, जल गर्म कर दिया है, आप स्नान कर लें।

0: आपको तुम्हारा नाम चंदन बाला होता है। तुम्हें प्यार से चंदना कहकर बुलाया करूंगा। बेटी चंदना, तुम किस वंश की? तुम्हारा पहले का नाम क्या है?
1: मेरे दयालु पिताश्री, दासी तो दासी ही होती है, उसका क्या वंश, क्या देश और क्या नाम। मैं तो आपकी नई दासी हूँ, यही मेरा नाम है।

0: absolutely. आज से कोई दासी नहीं है, हम तुम्हें चरण दादा के नाम से ही बुलाया करेंगे। आपत्ति नहीं?
1: नहीं पिताजी, स्वामी की किसी बात पर आपत्ति करना दासी का अधिकार नहीं। आप चाहें मुझे किसी नाम से पुकारे, परंतु मैं हूँ आपकी दासी ही। तन मन से आपकी सेवा करना मुझ दासी का धर्म है।

यही जमी बैठी रहेगी और आप भी जाइए।

0: ठीक है, आप जाइए।
1: तुम जाओ, फिर मैं इस करण जली की ऐसी खबर लूंगी कि बस।
0: गोपाल, अरे ओ गोपाल, अरे कहाँ मर गया गोपाल?
2: आ गया स्वामी।
0: अरे कहाँ मर गया, तब से गला फाड़ रही हूँ। और एक बात बता, वो करमजली कहाँ है?
2: कौन स्वामी?
0: अरे वही नई दासी, देख तो कहीं बैठी श्रृंगार पटार तो नहीं कर रही है।
2: जो आ गया स्वामी।

Thank you.

किसी की हमें हत्या नहीं करनी है। मैं केवल उसे तड़पना चाहती हूँ। किंतु मेरे जाने के उपरांत मैं

सुनना चाहती हूँ। यह किस्सा अभी लौटेगी। मैं अपने मन की बहस पूरी तरह से निकाल कर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी और आज ही मैं प्रस्थान कर जाऊंगी। अरे जाती कहोगे तू भी कहते आज मैं अपने मन को तो ऐसा सहमती हूँ और वो भी तो बड़ा निछावर दिए जाते थे। ठीक है तू जा प्यार ये चुराई अब देख कब आया ना मजा बड़ी बनने चली थी मेरी सपन। जो एक भी शब्द मुंह से निकाला

Thank you.

Thank you.

0: ये आवाज तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो मेरे से आ रही है सोनी।
1: मैं देखता हूँ।

0: Hey,
1: may I help you, Dasher? I'll keep sending them.
0: क्या हुआ किसने तुम पर अत्याचार किया क्या पूछता मुला नहीं

0: अरे यह तो महावीर वर्धमान है जिन्होंने आज 15 दिन के बाद अपना उपवास खोला है।
1: आपके पास हुई प्रभु वर्धमान काशी की भिक्षा स्वीकार
2: कीजिए।
3: तू यहाँ कैसे?
1: मेरा भाग्य मुझे यहाँ लाया है।

करी प्रकृति उनकी महारानी धानी और उनकी इस बच्ची का परिणाम मैंने इन दोनों का अपना कर लिया। थोड़ा भी तो पड़ी किन्तु उस स्वाभिमानी ने अपने प्यार देकर अपने सम्मान की रक्षा की। यह दोष मेरा पापी मन मुझे इसके प्रायचित स्वरूप मैं इस बच्ची का पालन पोषण करने के लिए अपने साथ ले आया।

0: चलिए महावीर प्रभु चलिए।
1: जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
2: अभी तक आप सुन रहे थे लोकेंद्रनाथ कौशिक का लिखा नाटक बड़ी साध्वी चंदनवाला। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे संदीपन विमलकांत नागर, अंशुल शर्मा, अंजू सूद, मोहिनी आचार्य, वाटिका सूद, श्यामा माटा, मनोज राठौर, देवराज कृष्ण दीक्षित और अरुण शर्मा। इस नाटक के प्रस्तुति सहायक थे राजेश कुमार शर्मा और प्रस्तुति हरीश त्रिहन।

समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। फिल्म रंग से लिया ये गीत अभी आपने सुना अनका याग्निक कुमार सानू के युगल सुरों में।

समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया आनंद मिलिंद ने। अपने सुरों में प्रयाग का याग्निक कुमार सानू ने। फिल्म थी सनम। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म मन से। इस गीत को सुर दिए हैं उदित नारायण अलका याग्निक ने।

मन, अभी आपने इस फिल्म में सुना उदित नारायण अलका याग्निक के युगल सुरों को। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने।

नदीम श्रवण के संगीतबद्ध इस गीत की शब्द रचना की थी समीर ने। फिल्म थी साजन, गीत को अपना सुर दिया एसपी बालासुब्रमण्यम ने।

अभिजीत अलका याग्निक के युगल सुरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रात से लिया ये गीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

दिल तेरा आशिक, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक मुकुल अग्रवाल को। संगीत बद किया था नदीम श्रवण ने, शब्द रचना एलवाई समीर की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

और प्यार हो गया। अभी आपने सुना इस फिल्म में नुसरत फतेह अली खान को। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे पेश है आप सभी का अपना कार्यक्रम गीत बात और SMS कार्यक्रम के साथ। आज मैं हूँ आपकी RJ दोस्त चंद्रा खत्री। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके कार्यक्रम में। संदेश पहुँच चुके हैं और संदेश जो आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि साथियों इसी से तो आप और हम जुड़ते हैं। कस्बा वाराणा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में।

शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली, जिला मुरादाबाद से ये संदेश हमें लिख भेजा है। शमसुल खान, अदनान, फैजान, तबिश खान, आबाद खान, अनु खान, कलीम अंसारी, आप सभी गंज डंडवारा से हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एस के पुरी, बी के पुरी, रशपाल पुरी, हरीश, राजू, सतीश, विनोद, आप सभी लुधियाना से कार्यक्रम सुन रहे हैं। विदर्भ श्रोता क्लब से हमसे जुड़ चुके हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार, प्रोफेसर वसुधा वज्रसन, बहुत शुक्रिया सभी को हमसे जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र का संदेश हम तक पहुंचा है लक्ष्मण राव का, कल्पना ताई, प्रतीक्षा लोखंडे, शैलेश, स्वप्निल, रक्षता और रियांश का, सभी हमसे जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। दिल्ली से जुड़े हैं सुखविंदर सिंह, सीटी दीवाना, पंखा, रोड जनकपुरी से जुड़ रहे हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्जी मंडी जज्जर से रीता भाटिया, पिट्टू भाटिया। हरियाणा से हैं जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, शुभ चंद्र बजाज, बहुत सारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं और अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। संदेश 11:45 से 12 बजे तक हम लोग शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल, आप सभी पिंगवाला चौक से हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से ये संदेश लिख भेजा है कीर्ति कुमार, श्रीमती संतोषी, निम्मी, पम्मी और निशांत ने। योगेश बगाड़िया, क्रियांश, ओम, बेबी गरिमा, रजत और मनीष, आप सभी फाजिलका पंजाब से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीके साहू, आप सभी का छत्तीसगढ़ से मैसेज हम तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र से है रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संगई परिवार। गुजरात के अजीत, प्रमिला, भाविश, जेमिन, भावसार। अगले श्रोता है वनस्थली पूरम हैदराबाद से दौरनाला बालाजी, श्रीमती रेणुका बद्री और हरिणी लोकेश साईकृपा। राजकोट से हैं जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा और राकेश। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल एंड विलिस डिकेस्ट्रो हमसे जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।

गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी रॉय, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय एंड प्रांजल राय। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

संदेश पहुंच चुका है मोहम्मद गली अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी का। आप गंज डंडवारा से हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर, छत्तीसगढ़ के ये श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। अनुश्री, उषा बुरांडे, धनश्री बुरांडे, अनिल बुरांडे महाराष्ट्र से हमसे जुड़ रहे हैं। कमल सहनी, मिस्टर पिंकी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर, बेगम इफ्जाल, आप सभी महाराष्ट्र के श्रोता हम तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साई किरण, आप सभी का शुक्रिया। सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जुन, नव्या, आप सभी हरियाणा से हमसे जुड़ रहे हैं, आपका शुक्रिया। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली झारखंड से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति, आप सभी दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया।

जिला गाजीपुर से हमसे जुड़ चुके हैं। जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। आबाद खान, नवील खान, अरफान खान, एम असलम सैफी एंड इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली, आप सभी कासगंज से संदेश भेज रहे हैं। गंगाधर, प्रमोद, प्रदीप, आप सभी महाराष्ट्र से हमसे जुड़ रहे हैं। फनीश कुमार, चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी करानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार, आपका बहुत शुक्रिया छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ने के लिए। विनोद, नेहा, दीपक, चेतन, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का। राजकोट, गुजरात से रश्मि, झरना, भरत कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर एंड डॉक्टर सुनील, आप सभी पत्रोड़ा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, हरियाणा से। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरान, नरगिस खातून, आप सभी दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से अपना संदेश हमें भेज रहे हैं। यवतमाल से राहुल, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी, प्रियांशी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सभी श्रोता हमसे जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं आपसे जुड़कर, आपसे बातें करके। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण हमसे हरियाणा से जुड़ रहे हैं।

नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साईं गायकवाड़, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, हम हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सोनू, सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, आप सभी का शुक्रिया हमसे दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ने के लिए। विजय चौहान, तेजस्विनी इंदुरकर, बेबी शौर्या, अंकिता और अनिकेत महाराष्ट्र से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा दतरेंगी से हमसे जुड़ चुके हैं। मोदाना महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर, आइए सुने आप सभी की पसंद का कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिद और शाहिद, अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब, आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा। इसी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से श्रीराम, उषा, वैष्णवी, पूनम एंड युवराज, सभी का शुक्रिया। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु एंड संस्कृति पौरुष, आप सभी बेंगलुरु से हमसे जुड़ रहे हैं। सनावत से जुड़ चुके हैं यूनुस खत्री, शफी, इदरिश, नूरू मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना। ऐशबाग लखनऊ से हैं रानी, मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी, कुसुम गुप्ता, मधुबनी राजनगर, कांति निकेतन, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता एंड रिद्धि गुप्ता। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, आप सभी जमशेदपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं सौरभ, प्रकाश, बल्लू और तरुण। राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, आप सभी का बहुत शुक्रिया। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मनोज, हर्षा, जूही, बेबी, आप सभी श्रीरामपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सुषमा, परिधि, मायरा एंड मास्टर विठल, आप सभी महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं। मुकेश भट्टा, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश, आप सभी का बहुत शुक्रिया पटियाला से जुड़ने के लिए। मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा, हसन, बाबू, मिफ्रा, बेबी चाह, सादिया झारखंड से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार, आशीष एंड मुरहेकर। इसी के साथ जुड़े हैं पी एस नवाकर, निर्मला एंड विशाल, आप सभी का बहुत धन्यवाद। अशोक, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री छत्तीसगढ़ से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ही प्रकाश, निखिल, प्रिंस, यशस्वी। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल, भाई छत्तीसगढ़ जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे बहुत जुड़ते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं। ओहो, फिर छत्तीसगढ़, हीरामणि, परसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, सीरादी श्याम और इंदिरा शर्मा, एम फारूक शेख, श्यामा परवीन, सैमा, सरफराज शेख, कुलफराज, बीबी मुस्कान, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं एटा से हमारा।

कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला एंड बलकरण वर्मा अगेन छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ से ही सतीश, अनेजा, बिमला, अनेजा। साथियों, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, अपने संदेश हम तक पहुंचाते रहिए। बस मीना, अश्विनी, विपुल, आरसी, कामले, करुणा, जवाहर नगर दुर्ग से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ही शुक्रिया। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। कुछ तो हमारे पता है श्रोता साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल कंटिन्यू हमसे जुड़े रहते हैं और उनके नाम और सब कुछ हमको याद हो जाता है कि कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से कौन सा किस तरह का गाना वो लिखने वाले हैं, बस उनकी पसंद भी हमको समझ में आ जाती है। छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दीवानगन, कौशल्य दीवानगन, हिमलता, डिम्पल दीवानगन, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, अरीज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, आप सभी सीतामढ़ी से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया अपना संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही, मेहराज जहां, आप सभी लग्जर हरिद्वार से हमसे जुड़ चुके हैं। मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय, हिमांश, राजस्थान से।

अगला संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं वासुदेव अनीता रमेश राव, आप सभी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। श्रीमती सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, चंदूलाल और कुमारी क्रिस्टी, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता। महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और बंडू लोहार। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय, बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। तुलसी मस्किन, वीना, आशीष, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, आप सभी का शुक्रिया हम तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रवि, रविराज, गौरव कुमार एवं मित्रगण। इसी के साथ छपरा दालदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार, सर्वजीत कुमार और सुधांशु। मोहम्मद कलीम जख्मी, भवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम, आप सभी गंज डंडवारा से हम तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। राजस्थान से बबलेश पवन से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

खंडवा से जुड़ रही हैं बेबी शालिया, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा और बेबी आयशा। इसी के साथ धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री। बस इस गीत के साथ ही गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

102.2 MHz पर ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में लीजिए आनंद पुष्पलता शर्मा के गाए ब्रज लोकगीतों का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं पुष्पलता शर्मा के गाए लोकगीतों का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पुष्पलता शर्मा के गाए लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: के साथ मैं लवली निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
2: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
0: सेना प्रमुख की ये टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के

0: लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका का कार्यक्रम चित्र भारती सुनेगा रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 से आप सुन सकेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे किसान वाणी संध्या 6:15 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा, विषय रहेगा पशु पोषण में खनिज लवण और गर्मियों में पशुओं की उचित देखभाल। इसी के साथ होगी भेंट वार्ता, विषय लेकर आएंगे गर्मी में पशुओं के रोग और देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राम सागर, आपसे भेंट करेंगे सत्यव्रत सिंह। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा 7:05। इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कैलाश कुमार कौशिक के लिखी लोक कथा, शीर्षक होगा राजा बना तोता। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर अंगना, समय रहेगा 1:15। सामुदायिक गाने शिक्षा पाठ का समय 1:45 रहेगा। आज सुन सकेंगे गुजराती भाषा में ये पाठ।

अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस व सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। इसी के साथ युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 से।

संध्या वंदन। ये कार्यक्रम संध्या 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय संध्या 7:31 रहेगा।

एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर।

अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

संगीत सुरों में अभी आपने सुना देशगान। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम घर अंगना। कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं विजय लक्ष्मी। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं ओपी सिंह।

0: घर अंगना कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम, संगई चंद्रा बहन आपको हमारी राम राम,
1: राम राम विजयलक्ष्मी बहन, राम राम।
0: बहन बहुत जोर की गर्मी पड़ रही है, पर तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो। क्यों? क्योंकि दोपहरिया को आनंद ले रही हो।
1: सही कहा। और आज क्या है ना, गर्मी तो है ही, लेकिन संग में क्या है, एसी में बैठ जाओ तो बड़ी ठंडक मिले है। और क्या है ना, ठंडो ठंडो पानी पियो और नींबू पानी पियो तो खूब मजो आवे। और तुम आज अपने कार्यक्रम में नेक बहनन को ना यही बताए दियो।
0: बहन देखो गर्मी तो पड़ रही है, और देखो चंद्रा बहन कितनी चटर पटर हमें बात बता रही है। और देखो हम चाहे कि हमारी सबरी बहन जब गर्मी में ऐसे ही चटर पटर हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती रहे। और जाकी वजह बताऊं, मैं अभी जब रेडियो स्टेशन आई ना, तो बहन बहुत ठंडा पानी लाई और बाने खुद पियो और सवन ने पिवायो। तो जब पानी में बड़ो गुण है, तो मैं सवन से अपनी बहनन ते कहूंगी कि काम तो खूब करो, पर जैसे पसीना बह रहे हो वैसे जब पसीना को रोको, कैसे रोकेंगे, पानी पी के, क्योंकि नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। तो खूब तो पानी पियो और खूब पानी पिवाओ, और है सके तो नॉन चीनी को घोल बना लियो और बाय पियो। तो बहुत सी बहन के हमें का कोई दस्त है ना, जो तो दस्तन में पियो जाए। तो ना बहनों पसीना निकल रो है ना, तो नॉन चीनी को घोल भयो, नींबू की सिकंजी भई, छाछ भई, जे हमारे शरीर में बड़ी राहत दे में। तो बहनों देखो खूब गर्मी से बचवे को काम है। और जा समय तो हम तरबूजे हैं, खरबूजे हैं, सत्तू है, आनंद तो ले सकें। और दोपहरिया को तो हमारी बहन ही सबसे ज़्यादा आनंद ले में, खीरा काट ले, टमाटर काट ले, और जाते बालक बाजार की चीज़ खा बेते हुए बचेंगे, बालकन को चबाए भी की आदत आएगी, क्योंकि भोजन को अगर हम चबाए के करेंगे

एक तो हमारे दांतन की एक्सरसाइज भाई, एक हमारे पेट में जरा फंस जाएगा तो जे हमारे रेशेदार जो भोजन है जे हमारे आंतन में जाए के बड़ो आराम देवे। संग में दोपहरिया को सदुपयोग, तीसरो काम बालक थोड़ो थोड़ो काम करबो सीखे, हिल मिल के आपस में रहबो सीखे। और देखो बहनों, समय को कहाँ काटबो, जाए हंस के काटोगे तो जे हंस के निकले, और चूं चूं चाहे चाहे करते रहोगे तो जे ऐसे ही निकल आएगा। कि मैं ना समय को कोई परिभाषित नहीं कर पाए है, बल्कि समय से ही सबकी परिभाषा बने। जय मारो तो कोई के समय फूलन की सेज है, तो कोई के समय कांटन ते भरो है, कोई के लंबी कारी रात है, तो कोई के अरे चंद्रमा से भरी चांदनी रात है। तो देख भी को अपना अपना नजरिया है, और हमें तो अपना काम करते चलना है। देखो हर मौसम सुख लेके आवे, संग में वहां में थोड़ी बहुत परेशानी हो में। अब जहाँ से मैं गर्मी है, कौवे दस्त लग रहे हैं, उल्टी है जहाँ में, पसीना बह रहा है, तो कमजोरी आ जावे, तो जहाँ से बच के रहना है। और बहनों इतना ही ना है कि हमने कह दे कि ना उनको घोल पी लो, चीनी को घोल पी लो तो काम चल जाएगा। अगर धूप में काम करवे की वजह से या धूप में आए वे जाए वे की वजह से नेकादू शरीर में दिक्कत है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ, क्योंकि डॉक्टर देख के दवाई देगा और वो दवाई हमारे शरीर को लगेगी। आपस में एक दूसरे से पूछ के दवाई को मत लियो, क्योंकि समय को कछु पता ना है कौन सी दवाई हमें नुकसान कर जाए। और बहनों देखो, जब हम अच्छी बातें न करें, लंबी दोपहरिया की बात करें, तो वहाँ में संगीत को बड़ा महत्व है बहनों। तो बाजे पायलिया भैया, कोई नाच रोए, कोई गाय रोए, कोई ठुमका लगाए रोए, तो बहनों आओ आनंद लें जा सुंदर से लोकगीत को।

बालू रेती में बंगला छवाओ, आई ऋतु गर्मिन की। तो अभी हमारी बहना बीना शर्मा और सखियन के स्वर में आनंद ले रही हती जब बहुत सुंदर से लोकगीत को। बहनाओं, स्वगणना भारत की जनगणना 2027 को एक डिजिटल विकल्प है, जहां नागरिक जनगणना कर्मचारियों के आय व्यय से पहले स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपने मकान व अपने परिवार की जानकारी दर्ज कराए सकें। ये सुविधा घर घर गणना शुरू है भी से पहले 15 दिन के काजे खुले है। अब देखो बहनों, जाए हम ऑनलाइन पोर्टल पे लागू कर सकें, यानी कि अगर काऊ पे कंप्यूटर आवे या बालकन पे आवे या हम अपने बालकन की सहायता से एक जो भारत सरकार के आधिकारिक जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाके कर सकें, जहाँ मैं अपने राज्य और जिले को पते को चयन कर सकें, परिवार के मुखिया को नाम, मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से जाए लॉग इन कर सकें। और ना आवे तो जब जनगणना वाले घर आएंगे ना, तब करवाए ले में कोई असुविधा की बात ना है। पर देखो बहनों, सुरक्षित रहो, ऐसा ना है कि कोई जनगणना करवे तो आयो ना है, वैसे ही कोई पूछताछ करवे आए गए हो तो हमने भाई अपना सब बता दियो, ऐसा ना है। नेक आंख खोल के काम करवे की जरूरत है। देखो मनुष्य है, दया भीतर है, जिस यहाँ तक तो बात सही है। गर्मी पड़ रही है, कहो व्यक्ति एक गिलास पानी पिवानो हितकर है, पर कौए भीतर बैठार के पानी पिवानो हित करना है। बहनों, जाते तो भाई हाथ को पंखा बाहर की बाहर दे दियो और पानी की बोतल दे दियो कि ले भैया छाया में बैठ के पी लियो। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही सुरक्षित रहना है और अपनों काम करते रहना है। ने आंख खोल के काम करें, संग में जानवरन पे विशेष दया रखें। ऐसी गर्मी में हूं, बहुत से व्यक्ति जानवरन ने कस के मार दे में या पानी को बहाव बिल्कुल रोक दे में, कि घर के आगे पीछे कहूँ कहू कुत्ता, कहू बिल्ली, कहू बंदर, कहू के काजे एक दानो ना है, तो जे गलत है। इनके घर यानी कि पेड़ पौधा हमने छीने, चिड़ैया है, गौरैया है, नैनी नैनी से कितनी प्यारी है, तो इनके काजे पानी अवश्य रखें। कि मैं ना साग में से छिलका और चून में से भूसी, और जे उना देओ तो तुम्हारी खुशी। तो जानवर तो मनुष्य के पीछे ही बनाए हैं, तो जो छिलका भाजी भूसी जो तो हम डालेंगे ही बिनको, तो जैसे कहे जानवर खुश रहेंगे। एक बाल्टी पानी पिवा दे तो जानवर खुशी निकल जाए घर के आगे से, मारो मती ना, नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही है। संग में बालकन को बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखना है कि भैया ना तो हमने जानवर मारे और चिड़ैया कबूतरन को पानी रखो, अब भीतर घुस के आए तो बड़े बूढ़े हैं, हमारे बालक हैं, बिनको कौन देखेगा। और हर मैया बाप चाहे कि हमारे बालक खुश रहें, सुरक्षित रहें।

0: कोई भी मौसम की मार बिना प्रभावित ना कर सके, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंड पड़े, वो बीमारी ना हुए वो कैसे होएगा। अरे जावत को हम जाने डॉक्टर अभिलाषा को श्रेष्ठ बहन से, बालकन के विकास और पोषण के आधुनिक तरीके।
1: नन्हे से बीज को यदि उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उचित मात्रा में खाद, पानी, दवाई और स्वस्थ वातावरण दिया जाए तथा समय पर निराई गुड़ाई और उचित देखभाल की जाए, तो समय आने पर एक विशाल तथा मजबूत वृक्ष बनकर दूसरों का सहारा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार शिशु को उसकी शारीरिक जरूरत के अनुसार आहार उचित मात्रा में पौष्टिक तत्वों वाला दिया जाए व उचित देखभाल की जाए, तो वे स्वस्थ नागरिक के रूप में विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था में विकास की गति सबसे अधिक होती है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भकाल में शिशु का विकास माता के द्वारा लिए गए आहार पर निर्भर करता है। माता की मानसिक व शारीरिक अवस्था के अलावा माता के भोजन, व्यायाम, रहन सहन तथा वातावरण का प्रभाव गर्भ के बच्चे पर पड़ता है। जैसा कि कहा भी गया है कि स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। अगर माँ में रक्तहीनता है तो शिशु न केवल दुर्बल होगा बल्कि उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास भी उचित रूप से न हो पाएगा। यदि गर्भवती स्त्री को पूर्ण संतुलित भोजन दिया जाए तो शिशु पूर्ण स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट उत्पन्न होगा तथा माता को भी रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। गर्भावस्था में स्त्री को दूध व इससे बनने वाले पदार्थ, हरी सब्जी, फल, दालें, सलाद, अनाज उचित मात्रा में दी जानी चाहिए। मांसाहारी स्त्रियों को अंडा व मांस भी उचित मात्रा में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रोटी चोकर सहित आटे की पकी हुई देनी चाहिए, इससे उन्हें कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अधिक मसालेदार चटपटा भोजन नहीं देना चाहिए, बासी भोजन न दें, कठिनाई से हजम होने वाले तले भुने अधिक गरिष्ठ भोज पदार्थ भी न दें। भोजन सदैव संतुलित, हल्का, जल्दी पचने वाला और ताजा ही दें। गर्भवती स्त्री एक साथ पूरा भोजन अधिक मात्रा में न ले, पूरे भोजन को कई बार में थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले, रात्रि को 8 बजे तक भोजन कर ले, जिससे भोजन को अच्छी तरह पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए और इसी के साथ गर्भवती स्त्री अधिक समय तक भूखी भी न रहे। भोजन सादा, सुपाच्य, संतुलित, पौष्टिक और ताजा ही दें तो गर्भस्थ शिशु का विकास संतुलित होगा, जो कि आगे चलकर स्वस्थ शिशु के रूप में जन्म लेगा। जन्म के बाद बालक का शारीरिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास और चारित्रिक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। शिशु का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे विकास की गति कम होती जाती है। बालक के शारीरिक विकास को तो देखा जा सकता है, लेकिन मानसिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है, साथ ही साथ सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषा का विकास भी होता रहता है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर ही बच्चे की सभी क्षमताओं, भावनाओं, जरूरतों तथा विचार का मुख्य आधार होता है। संतुलित और पौष्टिक आहार पर बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही निर्भर करता है। बच्चे के शारीरिक विकास का ज्ञान उसकी लंबाई और भार में अंतर आने से पता चलता रहता है। शिशु के जन्म के 2 वर्ष तक उसके विकास

गति बहुत ही तीव्र होती है। किशोरावस्था से पूर्व तक यह गति थोड़ी धीमी हो जाती है। किशोरावस्था में विकास पुनः तीव्र गति से होने लगता है। किशोरावस्था पूर्ण होने से परिपक्व होने तक यह गति फिर धीमी हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग का विकास अपने विशेष नियम के अनुसार होता है। विकास की गति कुछ भी हो, लेकिन शरीर के सभी अंगों का विकास निरंतर होता रहता है। गर्भावस्था के समय में बच्चे की हड्डियों में मुलायमपन कार्टिलेज के कारण होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी हड्डियों में खनिज लवणों तथा कैल्शियम के ग्रहण करने द्वारा कड़ापन आता जाता है। बच्चे की हड्डियों का अच्छा विकास पौष्टिक आहार पर निर्भर करता है। आयु के बढ़ने के साथ शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है। बच्चे के सभी अंग उचित आकार और अनुपात में बढ़ते हैं। बच्चे की आयु बढ़ने के साथ उसका मोटापा कुछ कम होता जाता है। जन्म से लेकर युवावस्था तक बालक की लंबाई तथा भार में निरंतर ही वृद्धि होती रहती है, लेकिन यह गति सदैव समान नहीं रहती है। बालकों की लंबाई पर माता पिता, वंशक्रम, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन बालक कितना लंबा होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। नवजात शिशु एवं प्रौढ़ व्यक्ति के शारीरिक अनुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। शरीर के सारे अंग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्वता के बाद सभी अंगों की वृद्धि समान अनुपात में होती है। शारीरिक विकास में सबसे पहले सिर के अनुपात में वृद्धि होती है, फिर धड़ तथा सबसे बाद में पैर तथा हाथों के अनुपात में परिवर्तन होता है। बालक के जीवन के प्रथम 6 वर्षों में दांतों का विकास होता है। इसके बाद अस्थायी दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और उसके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। इस समय दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। बालक के शरीर के आंतरिक अंगों के विकास के अंतर्गत स्नायुमंडल का विकास, मस्तिष्क का विकास, पाचन प्रणाली का विकास, श्वसन प्रणाली का विकास, हृदय व रक्त परिभ्रमण प्रणाली का विकास, मांसपेशी और चर्बी का विकास उम्र के बढ़ने से युवा होने तक होता ही रहता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि का भी विकास होता है और बालक की मानसिक आयु उनके जन्म से किशोरावस्था के अंत तक बढ़ती है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए मानसिक विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानसिक और शारीरिक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी विशेष परिस्थिति में स्नेह, ममता, सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि आंतरिक वृत्तियों से प्रभावित होता है। नवजात शिशु संसार में एक बिल्कुल असहाय अवस्था में जन्म लेता है। बच्चा अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता और परिवारजनों पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर कुछ संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, खुशी। जैसे जैसे बालक का शारीरिक तथा बौद्धिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे अन्य संवेग भी विकसित होने लगते हैं। बालक के सीखने का संवेगात्मक अनुभव पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शिशुओं का मानसिक विकास भी तेजी से होता है, इसलिए उसे उचित पौष्टिक तत्वों वाला भोजन देना चाहिए। और प्रारंभ में बच्चे की वृद्धि तीव्र गति से होती है तो उसको प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए देनी चाहिए। इसके अलावा उसको उचित कैलोरी वाला भोज्य पदार्थ या भोजन देना चाहिए, जिससे उसे बढ़वार के लिए शक्ति मिल सके और रोगों से लड़ने की भी शक्ति मिल सके। शिशुओं की सामान्य वृद्धि के लिए खनिज लवण भी मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लोह लवण है। कैल्शियम व फास्फोरस अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं और लोह लवण से

0: हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जो माता का दूध होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, लेकिन गाय के दूध में लोह लवण की कुछ कमी होती है। शिशुओं को सभी विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। माता के दूध में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, गाय के दूध में यह कम होता है। विटामिन डी के लिए सूर्य की धूप में और कॉड लिवर ऑयल की बूंदें दी जा सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट से बच्चे को अपने कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है, जो कि आलू, केला, अनाज आदि में पाया जाता है। बालक के उचित पोषण हेतु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही साथ उचित मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है। जल की कमी से शिशु को कब्ज हो जाता है। इन सभी बातों के साथ शिशु के विकास के लिए और उचित पोषण के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत बच्चों के वस्त्र, बच्चों के सामान खेलने के या बच्चों के रहने का कमरा, बच्चों का भोजन, इन सब में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: डॉक्टर अभिलाषा कुलश्रेष्ठ बहन, देखो कैसी बता रही हती ना कि बालक जब ही स्वस्थ रह सके, जब साफ सफाई से घर को बनो भोजन और तरीके तरीके को भोजन बिना समय समय पे मिले। कि मैं ना भोजन में बहुत बल है, कन्हैया जी ने कहिए कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लयो उठाए। क्योंकि भोजन के बल की कहाँ बात करें, कितने वो बैक्टीरिया वायरस जो हमें नुकसान पहुँचावे है ना, जिन्हें जीवाणु विषाणु के में कहें, वो दूर ढक्का से भाग जावे। कब? जब हम भोजन करें हमें और जय हमें अपने बालकन को समझानो है और गाय गाय के नाच के मुँह मटका के समझाओ तो बड़ी जल्दी समझ में आ जावे। तो लोकगीत के माध्यम से समझाएं तो आओ सुने जब बहुत सुंदर।

बाजे पायलिया। अभी हमारी बहना प्रमोद कुमार शर्मा भैया के स्वर में आनंद ले रही हती जा सुंदर से लोकगीत को। तो बहनाओं अब फिर मिलेंगे, जब तक के काजे हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना, प्रस्तुति विजय लक्ष्मी की थी और संयोजक थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गुजराती भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। गीतकार हैं जगत चंद्र मेघानी।
1: नमस्ते चंदू भाई।
2: नमस्ते हिरल बेन। नमस्ते शिवानी बेन। मैं आपको संघ गान के रूप में आज एक काव्य सिखा रहा हूँ। काव्य की रचना झवरचंद मेघाणी ने की है। झवरचंद मेघाणी राष्ट्रीय शायर थे। सौराष्ट्र का लोक संगीत उसने अच्छी तरह से समृद्ध बनाया है। ये वही रचना है जो लोक संगीत में बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं पहले आपको ये रचना लिखवा दूं, आप लिखिए।
1: ठीक है।
2: काव्य का कवि है झवरचंद मेघाणी। राग भैरवी और ताल खेमटा। लिख लिया?
1: हाँ, लिख लिया।
2: अभी ये जो रचना है वो गुजराती में है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। हो राज मन

0: राज मने लाग्यो कसु बिनो रंग, ये स्थाई है। हाँ ठीक है, लिख लिया। हाँ ठीक है। और अभी पहला अंतरा, जननी ना हैया मा पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसुंबीनो रंग।
1: जननी ना हैया मा,
0: ठीक है, पोढ़ंता पोढ़ंता
1: पीधो कसुंबीनो रंग।
0: ठीक है, आगे, धोला धावण केरी धाराए धाराए, धोला धावण केरी धाराए
1: धाराए
0: पाम्यो कसुंबीनो रंग, पाम्यो कसुंबीनो रंग। वहां एक लिख दीजिए और हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग, ऐसे है वो जो अस्थाई की लाइन है वो फिर से गाना है, तो हो राज इतना ही लिख

0: ये पहला अंतरा हुआ। अब दूसरा अंतरा, बहनी ने कंठे नीतरता हालर डामा घोड़ो कसुंबीनो रंग। बहनी ने कंठे
1: नीतरता हालर डामा,
0: ठीक है, घोड़ो कसुंबीनो रंग। दूसरी लाइन, भीषण रात्रि केरा पहाड़ोनी त्राड़ोए चोड़ो कसुंबीनो रंग। भीषण रात्रि
1: केरा पहाड़ोनी त्राड़ोए,
0: ठीक है,
1: चोड़ो कसुंबीनो रंग।
0: हाँ, वहाँ हो राज, इतना लिख दो। दूसरा अंतरा यहाँ खत्म हुआ। अभी तीसरा अंतरा, दुनिया ना वीरों ना लीला बलिदानों मा भभक्यो कसुंबीनो रंग। दुनिया ना वीरों ना लीला
1: बलिदानों मा भभक्यो कसुंबीनो रंग,
0: ठीक है। आगे, सागर ने पारे स्वाधीनतानी कबरों मा महक्यो कसुंबीनो रंग। सागर ने पारे स्वाधीनतानी
1: कसुंबीनो रंग।
0: और वहाँ हो राज, इतना लिख दो। वहाँ पहली लाइन वो फिर से गानी है। यहाँ तीन अंतरा खत्म हुआ। चौथा, भक्तों ना तंबू रची टपके लो मस्ती भर चाख्यो कसुंबीनो रंग। भक्तों ना तंबू रची टपके लो
1: मस्ती भर चाख्यो कसुंबीनो रंग।
0: वाह, दूसरी लाइन, वहाली दिलदाराना पगनी मेहंदी पर थी चूम्यो कसुंबीनो रंग। वहाली दिलदाराना
1: पगनी मेहंदी पर थी चूम्यो कसुंबीनो रंग।
0: वहाँ हो राज, इतना लिख दो। अब नेक्स्ट, नवली दुनिया केरा स्वप्नों मा कवियोए गायो कसुंबीनो रंग। नवली दुनिया केरा
1: स्वप्नों मा कवियोए गायो कसुंबीनो रंग।
0: आगे, मुक्ति ने क्यारे निज रक्तो रेडन हारे पायो कसुंबीनो रंग। मुक्ति ने
1: क्यारे निज रक्तो रेडन हारे पायो कसुंबीनो रंग।
0: वहाँ हो राज, इतना लिख दो। आगे, पीड़ितनी आसुड़ा धारे हाहाकारे रेलियो कसुंबीनो रंग। पीड़ितनी आसुड़ा
1: तारे हाहाकारे
0: रेलियो
1: कसुंबीनो रंग।
0: शहीदों ना धग धगता निश्वासे निश्वासे सड़गियो कसुंबीनो रंग। शहीदों ना धग धगता निश्वासे निश्वासे
1: सड़गियो कसुंबीनो रंग।
0: हो राज, इतना लिख दो। यहाँ ये जो काव्य है वो खत्म हुआ। मैंने पहले बताया ना कि ये जो काव्य है वो राग भैरवी पर आधारित है। भैरवी राग का स्वर मैं आपको अभी बताता हूँ। ये राग में वैसे तो 12 स्वरों का प्रयोग होता है। यहाँ जितने कोमल स्वर आते हैं वो रे ग ध नी, ये चारों स्वर कोमल है। संगीत में चारों स्वर ही कोमल है और शुद्ध भी है। ये भैरवी राग में चारों स्वर कोमल का प्रयोग है और ऋषभ शुद्ध का भी प्रयोग है, इसलिए ऋषभ कोमल और ऋषभ शुद्ध ऐसे प्रयोग हैं। ये प्रयोग ये काव्य में

0: ये जो क्रिया मैंने की उनको आरोह कहते हैं। अच्छा ऐसा करें, आपको थोड़ा सा तो समझ में आ गया है, तो आप मेरे साथ ही गाएंगे?
1: हाँ।
0: गाइए मेरे साथ।

अंग है सारे गम पद पम मगर हम उसमें ज्यादा नहीं करेंगे। ये काव्य है वो भैरवी राग में, मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले मैं गाऊं, आप कोशिश करें गाने की।

वहाँ जो ऋषभ है वो शुद्ध का प्रयोग है, सा ग रे ग, ये शुद्ध ऋषभ, स रे स, ये कोमल ऋषभ। पहले शुरू में शुद्ध का प्रयोग है, शुद्ध और कोमल दोनों का प्रयोग साथ में ही है ये काव्य में।

सांसे हैं, यानी ऊपर के सांसे हैं। ऊपर का सा कौन सा? सारे गामा पद नी सा, ये जो ऊपर का सा है वहां से अंतरा का उठाव है।

अभी आप सुन रहे थे गुजराती भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। गीतकार थे जगत चंद्र मेघानी। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह

0: कार्य आज से शुरू हो गया है। यह चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा

0: कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। पेश है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अनुराधा पोडवाल उदित नारायण के युगल सुरों में अभी आप सुन रहे थे मेजर साहब फिल्म से लिया ये गीत। FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म मोहरा से लिया ये गीत अभी आपने सुना पंकज उदास साधना सरगम के युगल सुरों में। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कुमार सानुवल का याग्निक और साथियों की आवाज में ये गीत फिल्म करण अर्जुन से।

शंकर महादेवन और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म मिशन कश्मीर में। इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यही संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ

साथियों, प्रेम हमें कठोरता से बचाता है, धैर्य हमें टूटने से रोकता है और करुणा हमें खुद तथा दूसरों को समझने की शक्ति देती है। जब ये तीनों गुण साथ होते हैं तो कठिन अनुभव भी बोझ नहीं लगते, वे आत्मविकास के सुंदर अध्याय बन जाते हैं। और इन्हीं कुछ विचारों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ खुशबू। स्वागत है आप सभी का

साथियों, प्रतिदिन हम एक नई चर्चा के साथ आपसे हम बात करते हैं और आज की हमारी चर्चा का विषय है सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी पर। सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण सामाजिक और मानवीय विषय है। जब किसी क्षेत्र में धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर हिंसा और दंगे होते हैं, तब अनेक लोगों की जान माल की हानि होती है। ऐसे प्रभावित लोगों को फिर से सामान्य जीवन देने की प्रक्रिया को हम पुनर्वास कहते हैं।

सांप्रदायिक दंगे वे हिंसक घटनाएं होती हैं जिनमें दो या अधिक धार्मिक या सामुदायिक समूह आपस में संघर्ष करते हैं। इनमें आगजनी, मारपीट, हत्या, लूटपाट और संपत्ति का नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे पीड़ितों का पुनर्वास क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, दंगों से प्रभावित लोगों को सुरक्षा, घर, भोजन, रोजगार, शिक्षा और मानसिक सहारा देकर दोबारा सामान्य जीवन में स्थापित करना ही पुनर्वास कहलाता है। ये केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि पीड़ितों को सम्मान और सुरक्षा के साथ समाज में फिर से बसाना है।

दंगों के बाद पीड़ितों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे दंगों में कई लोगों के घर, दुकानें और वाहन जला दिए जाते हैं और जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको फिर से उनके होठों पर मुस्कुराहट हम इसी तरह से दे सकते हैं। परिवार के सदस्यों की मृत्यु यानी कि कई परिवार अपने प्रियजनों को खो देते हैं, जिससे मानसिक और आर्थिक संकट बढ़ जाता है।

दुकान या नौकरी छिन जाने से आय का स्रोत भी बंद हो जाता है। दंगों के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनका भविष्य भी प्रभावित होता है। सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा देती है। जिन लोगों के घर या दुकानें नष्ट हो जाती हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देकर पुनर्निर्माण करवाया जाता है।

सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास मानवता और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण कार्य है। दंगे समाज को कमजोर करते हैं, जबकि पुनर्वास लोगों को नई आशा और सुरक्षा देता है। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ रह सकें।

साथियों, जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि सीखने, समझने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर भी है। सोच और उद्देश्य ही इंसान को खास बनाते हैं।

साथियों, अब रुख करते हैं अपनी दूसरी बात की ओर। और आज की बात में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। हर वर्ष 16 मई को ये मनाया जाता है। ये दिवस प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकों के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि प्रकाश केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, ऊर्जा और संस्कृति के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। 16 मई की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन वर्ष 1960 में प्रसिद्ध थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल ऑपरेशन की याद में दिन मनाया जाता है। ये दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्रों में अपनी भूमिका का जश्न मनाता है। प्रकाश हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकाश के अनेक उपयोग हम करते हैं, जैसे कि शिक्षा में विद्यार्थी प्रकाश में पढ़ाई करते हैं, प्रोजेक्टर और डिजिटल तकनीक प्रकाश पर ही आधारित होता है। अगर बात करें चिकित्सा की, तो लेजर से ऑपरेशन किए जाते हैं। आंखों के इलाज में प्रकाश तकनीक का उपयोग होता है। संचार में देखें तो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट प्रकाश तरंगों से ही चलता है। मोबाइल और टीवी तकनीक में प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान है। ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है और इससे बिजली बनाई जाती है। पर्यावरण की अगर बात करें तो पौधे प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जिसे हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें ये समझाता है साथियों कि प्रकाश केवल अंधकार दूर करने का साधन नहीं, बल्कि विज्ञान, प्रगति और मानव विकास का आधार भी है। हमें प्रकाश और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए तथा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई खोजों को अपनाना चाहिए। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है।

दोस्तों, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। टूटे हुए सपनों से भी नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। गिरकर संभलना ही तो जिंदगी है, हारकर चलना ही जीत है। जो आज है वो कल बदल जाएगा, बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है।

साथियों, दुनिया साथ दे या ना दे, खुद का साथ कभी मत छोड़ना। मुस्कुराते रहो, सीखते रहो, एक दिन मुकाम तुम्हारा भी होगा। हर पल को मौका समझो, जिंदगी खुद तुम्हें संवार देगी। इसी के साथ खुशबू को दे इजाजत, नमस्कार। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

किसान भाइयों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पशु पोषण में खनिज लवण और गर्मियों में पशुओं की उचित देखभाल। इसी कार्यक्रम में आप एक भेंट वार्ता भी सुन सकते हैं जिसका विषय होगा गर्मी में पशुओं के रोग और देखभाल। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राम सागर और इनसे बातचीत करेंगे सत्यव्रत सिंह।

कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक में आज आप सुनेंगे लोक कथा के अंतर्गत राजा बना तोता। कथाकार होंगे कैलाश कुमार कौशिक। समय रहेगा शाम 7:05।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे आशिकी फिल्म के कुछ गीत। समय रहेगा रात 8:30। कुछ देशभक्ति परक रचनाएं आप सुनेंगे 6:10 पर और रात 8:20 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 8:00 और 9:15 पर।

FM 102 दशमलव 2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। भैया, मौसम तो आप जान ही रहे हो कि गर्मी खूब ही जोरते पड़ रही है, पर भैया गर्मी हो चाहे सर्दी, हमें तो अपने खेती बाड़ी को, अपने पौ ढोर को ध्यान रखना होगा। भैया बड़े बूढ़े क्यों करते कि पौ के डाढ़ में दूध होए, कहवे को आसे मारो जी है कि हम अपने पशु को खूब सानी, दरिया, ज्वार, बरसी, जौ को चून, चोकर, चुनी सब दियो करते हैं, लेकिन भैया जो खनिज लवण को महत्व होए वो एक अलग होए। केवे को आसे मारो जिए कि संतुलित आहार पशुपालन को एक मुख्य आधार होए। संतुलित आहार पशु की शारीरिक अवस्था और उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे। पशु के पोषण में खनिज लवण को विशेष महत्व होए। खनिज लवण खिलावे ते पशु के दूध उत्पादन में तो वृद्धि होवे, लेकिन जो हमारे पशु हों उनकी प्रजनन क्षमता में हों सुधार होए, शारीरिक विकास दर में सुधार होवे और हमारे जो मादा पशु हों उनके दो ब्यातन के बीच में समयावधि कमी आवे, पशु आहार उपभोग और पाचन क्रिया में सुधार होवे और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होवे खनिज लवणते। केवी को आसे मारो जी है कि भैया अपने पशुन के बेहतर स्वास्थ्य के काजें हमको अपने पशुन के खान पान में, विशेषकर जो हमारे दुधारू पशु हों उनके खान पान में 50 से 100 ग्राम खनिज लवण उनको रोजाना खवावें। खनिज लवण हमारे पशु की हड्डी में मजबूती प्रदान करे, हमारे पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करे, हमारे पशु के दूध उत्पादन में वृद्धि करे। कहवे को आसे मारो जी है कि भैया हमें अपने पशु के पोषण के काजें हमें बा परंपरा से हटनो होएगो कि दानो दरिया बरसी में ला दो और दूध ले लियो। हमें दूध लेवे के संग ही संग अपने पशुन के शरीर को भी ध्यान रखनो होएगो और पशुन के शरीर को ध्यान रखने के काजें हमें अपने पशुन के आहार में, पशु के भोजन में खनिज लवणन को शामिल करनो होएगो। तो ये तो चर्चा रही भैया पशु पोषण में खनिज लवण। भैया हमारी का ब्रज नारी को जो एक अनपढ़ी और बाको अंग्रेजी पढ़ो भयो एक बालम बाको भड़तार मिल गो, तो वो अपने जा दुख को

कौन से तरीका ते व्यक्त कर रही है। ऐसो एक लोकगीत गीतांजलि शर्मा के स्वर ते सजायो के बाबुल ने ना पढ़ाई री मेरो बलम पढ़ो अंग्रेजी। तो भैया सुनो जा लोकगीत को।

0: अरे बाबुल ने ना पढ़ाई री मेरो बलम पढ़ो अंग्रेजी जा लोकगीत को अपने स्वर ते सजायो गीतांजलि शर्मा ने। भैया बात करें गर्मी के मौसम में अपने पशुओं की उचित व्यवस्था के बारे में, तो भैया गर्मी तो खूब पड़ी रही है और गर्मी में अपने पशुओं की उचित खान पान की व्यवस्था, उनके रहन सहन की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके खान पान में हरे चारे की मात्रा बढ़ानी चाहिए, खनिज मिश्रण को भी शामिल करना चाहिए, उनको सुबह शाम नहलाना चाहिए, दिन के समय खुले स्थान पर न बांधें, रात के समय खुले स्थान पर बांधें, और दिन के समय खासकर या चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि काऊ पेड़ के नीचे न बांधें, क्योंकि भैया इन दिना आंधी तेज हवा चलवे की संभावना रहे, तो ऐसा न हो कि काऊ पेड़ की डारी टूट जावे और हमारे पशु को नुकसान है जावे। दिन के समय उनको चरावे को बिल्कुल न ले जावें, खासकर 12 बजे से 4 बजे के बीच में बिल्कुल न ले जावें। दिन में कम से कम उनको 3 बार ताजी और स्वच्छ पानी पिवावें। उनके खाने में दाने दरिया को भी ध्यान रखें। तो इन सब बातों को आप अपने पशुओं की या गर्मी के मौसम में उचित व्यवस्था करके वाकु स्वस्थ रख सकें, अपने जो दुधारू पशु हों उनके दूध उत्पादन को भी बरकरार बनाया जा सके। भैया बात गर्मी में पशुओं की उचित व्यवस्था के बारे में चल रही है, तो या गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं में अनेकों प्रकार के रोग है जाया करें, और उन रोगों ते हमें अनभिज्ञता होए, हमें पहचान ना होए, तो या गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं में कौन कौन से रोग होएं और उन रोगन की कौन से तरीका से देखभाल करी जावे, जाके विषय में आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं, जहाँ में विशेषज्ञ डॉक्टर राम सागर और इनते बातचीत कर रहे हैं सत्यव्रत सिंह। तो भैया सुनो जा भेंट वार्ता को।
1: किसान भाइयों, दुवासु मथुरा के प्रोफेसर डॉक्टर राम सागर जी हमारे साथ में हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे गर्मियों में कौन कौन सी बीमारियां इस समय पे पशुओं में हो सकती हैं?
2: जी भाई साहब, इस गर्मियों में होली के बाद घरों में जो जानवर अंदर बांधे जाते रहे
1: जी,
2: वहाँ कलेलियों के परजीवियों के अंडे कलेलियों के अंडे खूब प्रचुर मात्रा में हुए और वो फूट करके उनसे पूरे परजीवी बनने लगे हैं
1: जी।
2: अब बनने के बाद अब ये जबरदस्त तरीके से गायों भैंसों पड्डा पड़िया बछड़ा बछिया इनके शरीर में, विशेष करके थनों के आसपास नीचे दोनों टांगों के बीच में
1: जी,
2: और मेल पशुओं में नर पशुओं में टेस्टिकल के आसपास पेशाब की जगह तक भयंकर रूप से कलेलियां फैली हुई हैं। इससे परजीवी रोग थ्रेरियसिस नाम का एक परजीवी बहुत घातक रोग है, जिससे होने पर मृत बहुत खून की कमी के कारण हो जाती है।
1: तो इससे खून की कमी हो जाती है,
2: ये खून चूसते हैं तथा एक थ्रेरिया नाम का जो हेमोप्रोटोजोआ है रक्त परजीवी है
1: जी,
2: वो अंदर पहुंचाते हैं जो खून की कमी करता है।
1: अच्छा,
2: ऐसी दशा में पशुपालकों को पहला तो ये वह कि जहाँ जानवर बनते थे जाड़े में नोहरे में उसकी पूरी सफाई करें
1: जी,
2: ये हो सके तो ब्यूटॉक्स नाम साइपरमेथिन नाम की दवा घोल के पूरे में छिड़काव कर दें। 5 ml 1 liter पानी 3% से 5% मिला करके घोल छिड़का दें और वहाँ 2-3 दिन जानवरों को नहीं बांधे हो सके, क्योंकि अच्छा। दीवारों के जो ईंटों के दराजे होती है उनमें लकड़ियों के में सब घुसे रहते हैं अंडे बच्चे उनके।
1: तो दवा का नाम एक बार से फिर बताएंगे?
2: साइपरमेथिन या ब्यूटॉक्स नाम की दवा आती है, इसको अवश्य ले लें और इसी से पशु को नहला दें, विशेष करके जो पेट के नीचे है पेशाब की जगह है थनों के आसपास एन के आसपास लेप कर दें गीले कपड़े से लेकर।

0: जी
1: और 15 मिनट बाद ताजे पानी से बोरा लेकर रगड़ रगड़ के नहला दें, और ये भैंस को वहां नहलाएं, गाय को वहां नहलाएं जहां बनती हो, ताकि वो पानी गिरे जमीन में, जो नीचे अंडे बच्चे उनके परजीवी होंगे घुसे होंगे गोबर में मिट्टी में धूल में, वो सब मर जाएंगे।
0: 1 लीटर पानी में 5 ml ये ब्लूटॉक्स दवाई
1: 5 ml
0: जी
1: मिला लीजिए आराम से, और ये दवा ध्यान रखें नाक मुंह आंख कान टट्टी रास्ता बचा के रखें, ताकि
0: जी
1: ये दवा नुकसान भी कर सकती है, और 15 मिनट बाद ताजी पानी से नहलाएं। दूसरा, अगर ये न करने में समर्थ हो तो घर में आग नहोरे में ऐसी आग जला जहां बाहर कहीं न लग पाए, और अंदर आग जला जला के घुमा घुमा के जला दे जहां बनते हो, वो
0: जी
1: जो बच्चे बच्चे सब मर जाएंगे। ये ध्यान रखे गर्मी का समय, आग बाहर न कहीं व्यवस्था न खड़ी कर दे। दूसरा, इस समय खेतों में खाली हो गए, पशु चराने छोड़ रहे हैं,
0: जी
1: बकरिया भेड़ है, भेड़ भेड़ बिना बांध के रख ही नहीं सकते, अगर
0: जी
1: चराना मजबूरी है तो भेड़ों का रेवड़ पूरा निकलता है, जहां तालाब मिलता है तालाबों पानी नीचे फिछले पेंदे पहुंच गया है
0: जी
1: वो पानी पीते हैं, उस पानी के पीने से उसमें तरह तरह के परजीवी हैं, अंतः परजीवी जैसे फ्लूक्स है, गोल कृमि है, फीता कृमि है, यकृत कृमि है, ये पेट में जाने के बाद आंतों का शोथ तथा लीवर का शोथ उत्पन्न करते हैं, आंतों की बीमारी तथा लीवर की यकृत की बीमारी उत्पन्न करते हैं,
0: जी
1: जिसमें आते खराब दस्त होगा और लीवर की पचन पाचन क्षमता कम कम हो जाएगी।
0: तो ये ज्यादातर भेड़ बकरियों में होता है
1: ज्यादातर भेड़ बकरियों में होता है, तो खेतों में पानी पिलाते हैं
0: जी।
1: कहीं के, अब तो पशुओं गायों को चराने की प्रथा कम हो गई, कहीं कुछ ही जगह चराते हैं जहाँ चराई पशुओं की हो नहीं रही है,
0: जी
1: केवल
0: जी
1: भेड़ बकरियां, अब स्पेशली भेड़ ज्यादा चराई जा रही है। अच्छा, बकरी तो ब्राउजिंग एनिमल है, चुन के खाता है, भेड़ झुक के घास चाट खाता हुआ चला जाता है,
0: जी
1: तो जो तालाब के आसपास जो घास हरी हरी उगी है वहां भी ये चलता है, और उस घास में परजीवियों के फर को लार्वा अंडे रहते हैं जो हरी घास के साथ खाने में पेट में चले जाते हैं भेड़ों के, और वो वहां फूट करके पूरा अंतः परजीवी पैदा हो जाता है। वो अंतः परजीवी तरह तरह की बीमारियां जैसे पूर्व मैंने बताया यकृत की और आंतों की बीमारियां करता है।
0: जी
1: तीसरा, अब ये पशुओं में इस समय आगे आगे चल के बरसात के सीजन आएगा, जिससे कि खुरपका मुंहपका गला
0: जी
1: घोटू लगड़िया बुखार ये आदि बीमारियां होंगी, तो इनको मई के अंतिम सप्ताह में या जून के प्रथम सप्ताह में गला घोटू लगड़िया बुखार और गला घोटू लगड़िया बुखार और फेफड़ी खुरपका मुंहपका का टीके पशुपालक को नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाकर पशु के संपर्क करके लगवा देना चाहिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और राष्ट्रीय नेशनल प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का खुरपका मुंहपका रोग उन्मूलन अभियान,
0: जी
1: उसमें हर 6 महीने में टीके लगाते हैं, तो अपनी जागरूकता करते हुए अपनी मजबूरी समझते हुए अपनी जरूरत आवश्यकता समझते हुए पशु के जाकर पता कर लें कब लग रहे हैं और उनसे संपर्क करके लगवाएं, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। चौथा, इसमें अब इसमें पशुओं में जो भी चारा है अब वो चारा की मात्रा हरा खत्म होता जा रहा है, हरा चारा नहीं मिल रहा ना के बराबर है, ऐसी दशा में आदमी पशुओं के चारे में ज्यादा ताकत दाचिए प्रोटीन हरा चारा नहीं मिल पा रहा है,
0: जी
1: तो रातिब की मात्रा बढ़ा दें, पानी की मात्रा में गीले भूसे में चबका बना खिलाएं या रातिब दाल खिलाएं, पानी की मात्रा अधिक रखें नाद में, जिससे कि शरीर में गर्मियों के पानी की मात्रा कम न होने पाए।
0: जी
1: इसी के क्रम में पशुओं में 1-11 बजे नहलाएं बड़े जानो गाय भैंस को, और 1-3 बजे नहलाएं, ताकि हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक या गर्मी के लू लगने की बीमारी की शंका न रहे, और पशुओं को धूप में न बांधे, हो सके तो छाया में या एड़ की कहीं नहरे में जहां धूप कम से कम लगे ऐसी जगह बांधे, ये ध्यान रखने की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कुछ बीमारियां मतलब गर्मी में हो जाती हैं पशुओं में, तो उनके लिए भी कुछ बताइए।
1: अब जैसे ये आप थिलेरियसिस है, इस बीमारी में हाई बहुत भयंकर 6-7 डिग्री तक तापक्रम जाता है,
0: जी
1: मुंह नथुना गीला रहता है, पशु नथुना गीला है, ज्यादातर बीमारियों में नथुना या मजिल सूख जाता है, इस बीमारी में नथुना गीला रहता है, नाक से लार आती है, आंखें थोड़ी सी भारी और बल्जिन या बाहर निकली हुई लगती हैं,
0: जी
1: और सांस लेने में पशु तकलीफ महसूस करता है, ये बीमारी एंटीबायोटिक से असर बेअसर रहती है। आदमी समझ नहीं पाता कि क्या पशुपालन।

0: समझ में क्या बीमारी, एंटीबायोटिक तो लगवा रहा हूँ, बुखार के लगवा रहा हूँ, परंतु फिर हो जा रहा है 106.7। ऐसी दशा में पशुपालक गीले कपड़े से पशु को पूरा पोंछ दे, जिसे कहते हैं कोल्ड स्पंजिंग, और फिर ताप क्रम कम करने की दवा नियोप्रोफेन या मेलोनेक्स प्लस ये लगवाए, और साथ में हीमोप्रोटोजन की, ब्यूपरवाक्विन तथा टेट्रासाइक्लिन की दवा डॉक्टर की, पशु चिकित्सक की परामर्श से लगवानी चाहिए।
1: मतलब ये किल्लियों से काटने के बाद की जो बीमारी है वो
0: किल्लियों के काटने के बाद बीमारी है।
1: हाँ, ये अच्छा, किसी अच्छा इसकी मतलब इसका प्रकोप ज्यादा देखा जाता
0: है इस समय अगर 10 गाय आ रही हैं तो 7 गाय थिलीरियसिस की हैं, ये रेशियो है। अगर 10 बीमार आ रही हैं साल में तो 7 आ रही हैं गाय थिलीरियसिस की।
1: अच्छा।
0: दूसरी समस्या सर, इस समय नया भूसा आया है उसका लाहे का, और नया भूसा गेहूं का भी आने लगा है
1: जी।
0: तो पशुपालक नया भूसा खिलाता है, पशुपालक नया भूसा खिलाने से आंतों में वो पाचन क्षमता नहीं, जो पुराना भूसा खिला के पाचन क्षमता ठीक थी, ये आंतों में फंस जा रहा है, और इसे इंफेक्शन कहते हैं, या आंतों से गोबर नहीं पास हो रहा है, पाचन पाचन नहीं हो रहा है
1: जी।
0: ऐसी दशा में पशुपालकों से अनुरोध है कि मात्रा कम खिलाएं भूसे की,
1: नहीं भूसे की कम से कम
0: खिलाएं, कुछ हरा चारा की व्यवस्था कर ले, अगर नहीं हो सकता तो भूसे को भिगो दे, और भिगोने के 2 घंटे बाद तब दे, ताकि उसकी पाचन क्षमता या डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाए, जल्दी डाइजेस्ट हो जाए।
1: तो सूखा तो देना ही नहीं है नया भूसा,
0: सूखा तो भूसा देना ही नहीं है, देने से फिर वो हाथों में फंसता है, और इंफेक्शन कहते हैं इसे, जम जाता है रूमेन में भैंस के या गाय के प्रथम पेट में, फिर आगे निकलने में समस्या करता है आगे बढ़ने में। दूसरी समस्या एक और आती है कि ये भूसा, जब नया भूसा आता है ये थोड़ी टेम्पेनी भी करता है
1: जी,
0: जिसे कहते हैं अफरा।
1: अच्छा।
0: अफरा भी करता है, तो अफरा के लिए थोड़ा बहेड़ा हर और थोड़ा सेंधा नमक पीस करके एक रख ले, और एक मुट्ठी हफ्ते में 2 बार दे दिया करें। भी नहीं कर सकते तो खाने का सोडा
1: जी,
0: इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा 20 ग्राम रोज दाने में डाल दे उसी में रातिब में।
1: अच्छा।
0: जिससे एसिड नहीं बनेगा, नए भूसे एसिड ज्यादा बनता है, इससे टेम्पेनी होगी तो एसिडोसिस नहीं होगी और ना अफरा होगा, ये पचने में भी मदद करेगा।
1: तो ये सावधानी तो बरतना जरूरी। अच्छा, नया चारा जैसे ज्वार वगैरह बोएंगे किसान भाई ने कुछ नहीं लगा दी होगी गर्मी की ज्वार। हाँ,
0: ज्वार किसान भाइयों को ज्वार आने लगी है, एक गड़बड़ी ज्वार में हो रही है, जिन किसान भाइयों ने समय से पानी नहीं लगाते हैं ज्वार में, तो उसकी जहां गांठ जड़ और पेड़ के तने के पीछे एक जहर बनता है, साइनिक एसिड कहते हैं इसे, हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं
1: जी,
0: जो जानवर चरते चरते खा लेता है तो उसे एसिजन पॉइजनिंग हो जाती है, और मृत्यु अकाल मृत्यु बहुत बिना समय गवाए हो जाती है, जैसे वह खाता है और पेट में जाता है, जैसे पानी के टच में आता है साइनिक एसिड बनता है और तुरंत मृत्यु होती है। जहां ज्वार है वहां पशुपालकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ज्वार भैंस चरने न जा पाए, गाय भैंस पड़िया बकरा बकरी, और दूसरा उस खेत में पानी लगवा दे, पानी लगवाने से जो ज्वार की गांठ में कंसंट्रेटेड हाइड्रोसाइनिक एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, विषैलापन कम हो जाएगा,
1: तब जाकर के ज्वार को पशु
0: तब ज्वार खिला खिलाए, या ये छोटी ज्वार में होता है करीब 1-2-3 बीता की ज्वार होगी, और अलाई ज्वार होगी, कोमलाई ज्वार होगी जिसमें पानी कम मात्रा होगी, उसमें होता है नीचे जॉइंट जहाँ चढ़ और तना ज्वार उस जगह होता है नीचे तने पे।
1: ये ज्वार के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, लोगों को पता नहीं चल पाता कि हमने क्या किया, लेकिन उससे क्या पशु बीमार हो जाता है,
0: उससे कुछ नहीं, बहुत ही मौत होती, फिर उसमें उपचार का समय पशु नहीं देता है, एकदम गैस बनती है, एकदम साइनिक एसिड ऑक्सीजन जो है मेथेन कन्वर्ट होता है, तुरंत ऑक्सीजन कमी होती है और मृत्यु हो जाती है, इसलिए पशुपालकों को ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, पशुपालक पशुओं को कम से कम 3-4 बार पानी अवश्य पिलाएं
1: जी,
0: और हैंडपंप का पानी पिलाएं, तालाब पोखर के पानी से बचे
1: जी,
0: ये अवश्य ध्यान रखें। अब एक समस्या और आ रही, जिन पशुओं में गाभिन पशु हैं, 4-4 महीने के पशु गाभिन हो गए हैं, उनमें पशुपालक प्राय पशुओं को धूप में बांध देते हैं, तो धूप में बांधने से सन स्ट्रोक से भी एबॉर्शन हो रहे हैं, गर्भपात हो रहे हैं, है ना, तो ये पशु पालकों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि धूप में न बांधे, धूप बांधने से लू लगना और गर्भपात की समस्याएं भी आती हैं।
1: तो ये सब सावधानियां हैं जो इस समय पर हमको बरतनी है पशुओं
0: हाँ,
1: को।
0: अच्छा। अभी गला घोटू और खिड़किया बुखार, लंगड़ा बुखार या और बुखार, जो भी बीमारियां हैं वो बरसात के पहले

0: ताप में आती हैं। इस समय थ्रेरियसिस है, कुछ हद तक परजीवी रोग हैं, या इंटेस्ट आंतों के रुकावट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंफेक्शन है, इनडाइजेशन नए भूसे का, एसिडोसिस है। ये बीमारियां इस समय मैक्सिमम है। और भेड़ों में गोलक्रम, फीताक्रम, एकृतक्रम, इनके कारण बीमारियां आ रही हैं, हो रहे हैं।
1: तो उन सब के लिए सावधानी बरतना इस समय जरूरी है।
0: हाँ,
1: तो
0: अगर किसी पशुपालक को लीवर फ्लू या एकृतक्रम की लक्षण आ चुके हैं, जैसे गले का सूजना, पैरों में सूजन आना, तो इसी दशा में ऑक्सुक्लोजोनाइड दवा 10 ml बड़ा जानवर, 5 ml छोटा जानवर के हिसाब से पिलाना चाहिए। और गाभिन जानवरों को ये नहीं पिलाने चाहिए, गाभिनों में ये कभी कभी भेड़ों में बच्चा फेंकने की शिकायत आती है।
1: ये मतलब आपने भेड़ों के जो परेशानी की उसके लिए,
0: भेड़ें ही तालाब पोखर में पानी पीती हैं ज्यादा, और पशुपालक हैंडपंप में कम पिलाते, क्योंकि रेवड़ 50 का है, 100 का रेवड़ होता है उनका।
1: जी
0: भैंस तो ज्यादातर अब स्टाल फेड हो गई, गाय भैंस तो अब आदमी खूंटे पे रखता है।
2: अभी भैया सुनने हते जब भेंट वार्ता को कि गर्मी में पशुओं के रोग और देखभाल, विशेषज्ञ डॉक्टर राम सागर और इनते बातचीत कर रहे सत्यव्रत सिंह। और भैया चलते चलते एक लोकगीत और हम आपको सुनवा दें, खेमचंद यदुवंशी की स्वरते के पियर की का धौंस दिखावे।

अभी भैया सुने हते खेमचंद यदुवंशी को के पियर की का धोस दिखावे, पियर या क्या कर लेंगे, और जा रही हो तो खूब चली जा, हम तो अकेले रह लेंगे। और भैया जब बात जावे की है तो हमारी जो स्टूडियो में लगी हुई घड़ी है वो भी हमें इशारों कर रही है

या अब अपने जा कार्यक्रम को समाप्त करवे के काजे हमों अपने घर को चलें, तो कार्यक्रम को करें समाप्त और सब भैयान को करें राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे रूप किशोर शर्मा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: अमित त्रिवेदी की आवाज़ में आपने सुना केदारनाथ फिल्म का ये भजन, और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक कथा के अंतर्गत राजा बना तोता। कथाकार हैं कैलाश कुमार कौशिक।
1: उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य को शासन हतो। उनकी रानी को नाम कलावती हतो। राज्य की प्रजा सुख चैन ते रह रही हती। खेतन में खूब अन्न पैदा हतो हतो। राजा प्रजा की सुध लेवे के काजे रात के समय भेष बदल के निकलते हते और जनता को दुख दर्द जान के बाकू दूर करते हते। एक दिना दरबार लगो भयो। राज्य के गुणी जन विद्वानन के बीच चर्चा चल रही। अचानक राजा बोले, महामंत्री जी, जा धरती पे कौन सी ऐसी विद्या है जो हमारे राज्य में नाए है। हाथ जोड़ के महामंत्री जी बोले, महाराज जा में कोई संदेह

लेना है। हमारे राज्य में एक ते बढ़के एक विद्वान परे गए हैं और अनेकन तरह की विद्या यहाँ पे शोभा पावे है। पर हाँ हाँ कहो, वृक्षों गए बोलो। राजा ने मंत्री ते कही। महामंत्री जी बोले, हमारे यहाँ पे परकाया प्रवेश की विद्या अर्थात अपय प्राणन को प्रवेश काउ दूसरी मृत शरीर में करवाए कोई ना जाने। जा बात को सुन के सवे दरबार में सन्नाटो छा गयो। राजा ने पूछी, बताओ जी विद्या कहाँ मिलेगी? महाराज, पुष्पगिरी पे एक महान तपस्वी सिद्ध सिद्धेश्वर हैं, जी विद्या उन्हें आवे है। महामंत्री की बात पूरी ना भई जब तक राजा उठ खड़े भये और शासन को जिम्मा महामंत्री को सौंपो और रानी कमला ते विदा लेके विद्या की तलाश में चल दे। कई दिना कई रात चले, रास्ता में अनेकन तरह के कष्ट सहन करते भये पुष्पगिरी पहुंच गए और सिद्ध सिद्धेश्वर के चरणन में सिर झुकायो और जी जानते उनकी सेवा में जुट गए। वहां पे एक सोमदत्त नाम को ब्राह्मण बरसंते तपस्वी की सेवा में लगे भये। जी ब्राह्मण सिद्धेश्वर ते बहुत बार सिद्धि देवे की प्रार्थना कर चुके पर ब्राह्मण को कुपात्र जान के सिद्धि ना दई। एक दिना राजा के सेवा भाव ते प्रसन्न है के सिद्धेश्वर बोले, हे राजन, तुम्हें यहाँ आए भये बहुत समय है गयो और तुमने मेरी तन मन ते सेवा करी है पर आज तक तुमने अपने मुखते कछु नाय मांगो। मैं तुम ते प्रसन्न हूँ और प्रसन्न है के मैं तुम्हें एक विद्या देना चाहतू। तपस्वी की चरण रज अपने माथे पे लगाए के राजा बोलो, मेरे मित्र सोमदत्त ने मोते ज्यादा आपकी सेवा करी है तो आप जो कछु मोए देना चाहो वैसे ही सोमदत्त को हूँ देव। इतनी सुन के सिद्धेश्वर दुखी है के बोले, हे राजन, तुमने का मांगो जा धूर्त को सिद्धि? जाते तो अनर्थ है सके। आखिर तपस्वी ने दोनों को परकाय प्रवेश विद्या को ज्ञान दे दियो। जाके बाद तपस्वी ते आज्ञा पाए के मित्र सोमदत्त के संग राजा विक्रमादित्य अपनी प्रिय नगरी उज्जैनी को चल दे। प्रसन्न भाव ते दोनों मित्र चलते रुकते भये उज्जैनी नगरी के समीप आए। संध्या की वेला हती, जा बजे ते दोनों नगर ते बाहर ही ठहर गए। अब ब्राह्मण सोमदत्त के मन में कुटिलता उपजी। वाने राजा ते कही कि मित्र, नगरी में प्रवेश करवे ते पहले हमें विद्या की जांच कर लेनी चाहिए। कहूं ऐसो तो ना है कि हम विद्या को भूल गए हों। मित्र, तुम ऐसो करो कि जा मृत तोता में अपने प्राण डार के जाकू जीवित कर दो। तुम्हारे बाद मैं उस सिद्धि की परीक्षा लूंगो। मित्र को आग्रह देख विक्रमादित्य ने अपने शरीर बाकू सौंपो और प्राण तोता में डार दे। तोता जीवित है गयो। धूर्त सोमदत्त ने तुरंत अपने प्राणन को प्रवेश राजा के शरीर में कर दियो और अपने देही को जलायो और राजा विक्रमादित्य के रूप में उज्जैनी नगरी को चल दियो। सत्ता के लालच में और अपने परम मित्र को जी विश्वासघात देख के तोता बनो राजा बहुत दुखी भयो। अपने राज्य ते विरक्त है के तोता के रूप में राजा जंगलन में उड़ गयो। उज्जैनी नगरी में सोमदत्त को राजा विक्रमादित्य जान के प्रजा ने उनको खूब आदर सत्कार कियो। रानी कमलावती ने आरती उतारी। भीतर पहुंच के सोमदत्त रानी ते बोलो, कैसी हो रानी? जिस सुनते ही रानी चौंक गई और सोचने लगी कि सदा कमला कहे वारे स्वामी ने मोते, आज रानी चौंकी। संदेह में डूब के रानी ने राजा की आंखिन में झांको। आंखिन में रानी को विक्रमादित्य को परिचित तेज नाय वरन काउ कपटी की धूर्तता नजर आई।
परीक्षा लेवे के काजे रानी ने

0: पूछी, पुष्पगिरी की पहाड़ी ते आप मोकू झंझावटी लाए वारे सो लाए के ना है। अरे रानी, भूतों में भूल ही आयो, नो करते कह के अभी मंगवाए दूंगो। घबराए के सोमदत्त बोलो, इतनो सुन के रानी समझ गई कि राजा के शरीर पे काउ और को अधिकार है गयो है। असली बात जी के झंझावटी नाम की कोई वस्तु हो ही ना है। तो रानी भलो बाकी फरमाइश राजा ते चौंकरती। रानी तुरंत अपे कक्ष में चली गई। दिन गुजरते गए। सोमदत्त अपे अधिकांश समय भोग विलास और खजानों भरवे में व्यतीत करवे लगो। बाने प्रजा पे अंधाधुंध कर लगाए दई। बड़ी संख्या में अविवेकी फैसला करे गए, जिनते राज्य में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई और प्रजा दुखी हेवे लगी। रानी अधिकांश समय अपे कक्ष में बंद रहती हती। चिंता की वजह ते रानी दिनों दिन दुर्बल हेवे लगी। जिस सब बातन ते बेखबर तोता के रूप में विक्रमादित्य एक पेड़ की डाली पे बैठे हते, तो अचानक एक गुलेल ते निकरे पत्थर की चोट खाए के पेड़ ते नीचे गिर पड़े। गिरते ही बोले, अरे दुष्ट, निरपराध जीव को चों सतावे है। तोता आदमी की तरह बोल तो देख के वह फटेहाल आदमी ने कही कि आप या तो कोई महात्मा हो, तुम मेरे कष्ट को दूर करो। मैं उज्जैनी वासी अपने परिवार को पेट भरवे के काजे जंगल में शिकार कर रहा हूँ। राज्य के कर को चुकावे के काजे जा नीच कृत्य को करूं। का बताऊं, वहां के राजा विक्रमादित्य ने सबको परेशान कर दियो है। प्रजा की जा दुर्दशा को सुन के विक्रमादित्य की आंखें में आंसू आ गए। जाय सुन के हृदय कंठ ते बोले, तुम मोकू उज्जैनी ले चलो। तोता के कहे के अनुसार बहेलिया पिंजरा ले राजमहल के बाहर खड़ो है गयो। तोता की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्रा मांगन लगो। रानी कमलावती ने बाकू खरीद लायो। रानी ने तोता को आदमी की तरह बोलता वह देख के जी बहलावे के काजे वह पिंजरा को अपने कक्ष में टंगवा दयो। रानी को उदास देख के एक दिना तोता उदासी की वजह पूछन लगो। तो रानी ने अपई व्यथा तोता ते कही और कहत कहत रोवे लग गई। रानी को रोते भय देख के तोता बोलो, कमला क्यों रो हो? जा शब्द को सुन के रानी के आंसू थम गए। रानी हैरानी के संग वा तोता को निहारवे लगी के जाने कमला कह के पुकारो है। तब तोता ने रानी को सब कहानी सुनाई। सच्चाई जान के रानी ने पिंजरा खोलो, तोता बने राजा के पैर छुए। जाके बाद विक्रमादित्य ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार राजा ने अपने प्राण निकाल के एक मरी गई छपकली में डाल दे। पिंजरे में तोता मर गयो। रानी बिलाप करवे लगी, हाय मेरो प्यारो सुआ, कहाँ चलो गयो? बिचारो भोजन हु चिंते ना कर सको। कोई है जो जाके प्राणन को थोड़ी देर के काजे लौटा लावे और मैं अपे हाथन ते जाकू भोजन कराए दूं? नहीं तो मैं जाके संग ही जान दे दूंगी। सोमदत्त को अब रानी के जा हट को पतो चलो, तो वो दौड़ो दौड़ो आयो और रानी ते बोलो, बस इतनी सी बात है, मैं अभी जा तोता को तुम्हारे काजे जिंदा कर देऊं। इतनो कहते हुए सोमदत्त ने अपे प्राण राजा की देह ते निकाले और तोता में डाल दे। सोमदत्त को तोता के रूप में जैसे ही छिपकली बने विक्रमादित्य ने देखो, उन्हें तत्काल अपई देह में प्रवेश कर लीनो। तोता बनो सोमदत्त, कछु सोच तो समझ दो। बातें पहले ही राजा विक्रमादित्य ने बाकी गर्दन मरोड़ दई। दुष्ट सोमदत्त को बाकी कर्मन की सजा मिल गई। अब विक्रमादित्य और रानी कमला दोनों खुशी के संग जीवन व्यतीत करने लगे।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया लोक कथा के अंतर्गत राजा बना तोता। कथाकार थे कैलाश कुमार कौशिक।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे आशिकी फिल्म के चंद नगमे। समय याद रखिएगा, रात 8:30

ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहें मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में

0: नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
1: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी, बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन

0: हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की MPMLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ, तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
2: उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। CBSE के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

एक ना एक रोज कहीं ढूंढ ही लूंगा तुझको। ठोकरें जहर नहीं है कि मैं खा भी ना सकूं। फल तो सब मेरे दरख्तों के पके हैं, लेकिन इतनी कमजोर है शाखें कि हिला भी ना सकूं।

इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो मित्र खुशबू।

श्रोताओं, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमने लिया है श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से। इन सभी के नाम हैं इस प्रकार: शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी, पुरंजय प्रजापति, कविता, गोविंद, सिमरन और प्रजापति फैमिली। इसके साथ ही अगला संदेश हमने लिया है गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पुला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके सभी परिवारीजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसुदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा। गांव कुमुदवन से रमेश चंद, सुनील, रचना, गव्वर और इनके सभी परिवारीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। नौगांव से सीताराम, रेखा, कॉलोनी, रोशनी और इनके मम्मी पापा। इन सभी के संदेश हमें प्राप्त हुआ है और अगले संदेश हम पढ़ें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आप ही की फरमाइश का ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आपने सुना ऐतराज़ फिल्म का गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी आप सभी ने जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी का हमें ये मैसेज मिला है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से। मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, समीम और माहे नूर अंसारी का हमें मैसेज मिला है किसी भी गीत के लिए। जिला बरेली ग्राम करेली से इनका हमें संदेश प्राप्त हुआ है। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत, इन सभी का मैसेज आया है भटिंडा पंजाब से। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया का मैसेज मिला है जमशेदपुर से। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया हमसे जुड़े हैं। और किसी भी गीत के लिए अगला संदेश हमें मिला है नेहरू चौक पे।

राठौर से सुरेश जाधव, अनीता आरती प्रसाद, सोनल बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन भगत और सुलोचना भगत का। ये मैसेज हमें मिला है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीन देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी हमसे जुड़े हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीम पलक, लुबना और यश मंसूरी का मैसेज मिला है मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से। अगला संदेश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गुगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का ये संदेश हमें मिला है। मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा का मैसेज मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा हमसे जुड़े हैं मजनू कटीला दिल्ली से, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक का संदेश हमें मिला है कृष्णा पार्क दिल्ली से। अगला संदेश हमें लिखा है आप सभी ने सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्रॉय, गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजी सुंदर, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा खटक, सतीश अनेजा, विमला अनेजा का मैसेज मिला है चंडीगढ़ से और ये संदेश हम तक पहुंचा है दूलापुर से। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ये लिखते हैं किसी भी गीत को हमें सुनवा दीजिए। और अगला संदेश मिला है राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। छत्तीसगढ़ से अगला संदेश मिला है कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी का। प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र राजकुमार इनका मैसेज मिला है हिसार से। तो सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का गीत। और अब ये संदेश हमें मिला है जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। किसी भी गीत के लिए इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। अगला मैसेज मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना हमसे जुड़े हैं ग्वालियर से। विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, कुमारी पूजा खटक, शंभुदयाल खटक, इनका मैसेज मिला है जाखोद राजस्थान से। पानीपत हरियाणा से ये मैसेज मिला है अनिल कटारिया का। इनके साथ हैं मंजू, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। किसी भी गीत के लिए इन्होंने हमें संदेश लिखा है। और अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोहारा दनियाखुर्द जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। गुनीराम राजपूत, संतोषी, प्रेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। कवर्धा से आप हैं संतोष राजपूत, हेम प्रभा, पूर्वी, गौरव राजपूत। तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद, पोत्रा, गुरशबद। किसी

गीत के लिए इन्होंने हमें फरमाइश भेजी है, और अगली फरमाइश आप सभी की। मोटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम पटेल, शुभम देवी किशन, भावना मानस और कनिका पटेल किसी भी गीत के लिए। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई प्रतीक्षा, शैलेश, स्वप्नील, रक्षिता और रेयांश लोखंडे, संगीता रानी जिंदल, पप्पू राजा खुशदिल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी आरजू, पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल, पूरा ही खुशदिल परिवार हमसे जुड़ा है, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। अगले फरमाइश करता आप हैं पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावाद से मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत, फिल्म का नाम है आनंद।

हम तक आया है ताज मोहम्मद अंसारी का, गुलाम साबिर राही मेहरहा अर्ज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान का मैसेज।

और रेहान का मैसेज हमें मिला है और सहारनपुर से ये संदेश मिला है जॉन डिकेस्ट्रो का, रोजी डिकेस्ट्रो, पल और विलिस डिकेस्ट्रो। छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहा, इन सभी का मैसेज हमें पुनः मिला है, तो कृपया करके आप दोबारा मैसेज ना करें। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार, लोकेश जोशी, कुमारी अकीता जोशी अनूप, मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। तेलीपारा विलासपुर छत्तीसगढ़ से अगला संदेश गुणवंत श्रीवास का, करुणा, आयुष, विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास। किसी भी गीत के लिए दरियापुर भावली महाराष्ट्र से इन्होंने हमें संदेश लिखा है, गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, सुशील, शेरी बडनोल अकोला से, अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर हमसे जुड़े हैं। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का मैसेज हमें मिला है। नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल, रसीद, अनम और यशफ अब्बासी हमसे जुड़े हैं एटा से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और ये संदेश हमें मिला है आप सभी का। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश और सभी परिवार के सदस्य, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, नथाना पंजाब से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहद परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, भगवत देठे पाटिल, लक्ष्मी, समर्थ, सुमार, सानिका देठे पाटिल का मैसेज हमें मिला है धामड़गांव महाराष्ट्र से। किसी भी गीत में शामिल कीजिए ऐसा इन्होंने लिखा है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। शिवाजी उगले और राहुल उगले का संदेश मिला है बर्फ गांव नादुरा से। महाराष्ट्र से भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे, समर्थ और कुमारी सानिका। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी जजूरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू हमसे जुड़े हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

बाजीगर, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर था पंकज उधास का। साथियों, आज हम बात करेंगे डेंगू के विषय पर। जी हाँ, मच्छर। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के कारण होती है। ये मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पैदा होता है तथा दिन के समय काटता है। डेंगू होने पर शरीर में

साथियों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना, इसके कारणों को समझना और समझाना और समय रहते बचाव के उपाय बताना। आज के समय में डेंगू तेजी से फैलने वाली बीमारी बन चुका है, इसीलिए इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि घरों के आसपास गंदगी का जमा होना, वहां मच्छर तेजी से पनपते हैं, रुका हुआ साफ पानी जैसे कूलर, गमले, टायर, बाल्टी, टूटे बर्तन, इन सभी में पानी जमा हो जाता है जो मच्छरों के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है। बारिश का मौसम जैसे कि बरसात के दिनों में जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे डेंगू फैलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है जागरूकता की कमी। कई लोग डेंगू के लक्षण और बचाव के तरीके नहीं जानते, जिससे बीमारी तेजी से फैलती जाती है। मच्छरों से बचाव न करना ये भी एक बड़ी बात है। पूरे कपड़े ना पहनना, मच्छरदानी या किसी और चीज़ का उपयोग ना करना और अपने आसपास गंदगी को बनाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कृपया ऐसा ना करें, अपने आसपास स्वच्छता रखें। जैसे ही डेंगू के लक्षण दिखाई दें, जैसे कि तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, कमजोरी, थकान, उल्टी या जी मिचलाना, त्वचा पर लाल चकते और प्लेटलेट्स का कम होना, यदि ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

श्रोताओं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि थोड़ी सी सावधानी से डेंगू जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। साफ सफाई को अपनाएं, डेंगू मच्छर दूर भगाएं, रुका पानी देगा रोग, जागरूक बने तभी होगा संयोग। स्वच्छ रहेगा घर आंगन, डेंगू रहेगा जीवन से बाहर हर क्षण। डेंगू एक खतरनाक लेकिन बचाव योग्य बीमारी है यदि हम अपने आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें और समय समय पर सावधानी बरतें तो डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। डेंगू दिवस हमें यही संदेश देता है कि रोकथाम ही सबसे बड़ा उपचार है, इसीलिए हमें खुद भी जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म के कुछ गीत।

साथियों, कुछ प्रेम कहानियां समय के साथ पुरानी नहीं होती, वो गीतों की तरह हमेशा दिल में गूंजती रहती हैं। आशिकी ऐसी ही एक अमर प्रेम कहानी है।

लोकप्रिय रोमांटिक फिल्मों में से एक आशिकी मानी जाती है। ये फिल्म अपने भावुक प्रेम, मधुर संगीत और दुखांत कहानी के कारण आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है।

फिल्म का अगर परिचय दें तो रिलीजिंग वर्ष था इसका 1990, निर्देशक थे महेश भट्ट, निर्माता थे गुलशन कुमार, मुख्य कलाकार की भूमिका में नजर आए राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, बेहतरीन संगीत से तैयार किया नदीम श्रवण ने और गीतकार थे समीर। ये फिल्म मुख्य रूप से प्रेम, संघर्ष, त्याग और भावनाओं पर आधारित है। फिल्म के गाने इतने लोकप्रिय हुए कि इसके ऑडियो कैसेट उस समय रिकॉर्ड संख्या में बिके।

कहानी एक युवा लड़के राहुल और एक साधारण लड़की अनु के प्रेम से शुरू होती है। राहुल एक अमीर परिवार से होता है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा विद्रोही और बेफिक्र होता है। दूसरी ओर अनु एक सीधी सादी संस्कारी और गरीब परिवार की लड़की होती है। एक दिन राहुल की मुलाकात अनु से होती है। दोनों धीरे धीरे प्रेम करने लगते हैं। उनका प्रेम सच्चा और गहरा होता है। राहुल अनु की गायन प्रतिभा से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे एक बड़ी गायिका बनाने का सपना देखने लगता है।

अनु को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अनु की आवाज लोगों को बहुत पसंद आने लगती है और धीरे धीरे प्रसिद्ध गायिका भी बन जाती है। लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ उन दोनों के रिश्तों में कठिनाई आने लगती है। राहुल का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। दूसरी ओर राहुल की गलत आदतें और जीवन की परेशानियां उनके प्रेम को कमजोर करने लगती हैं। अनु अपने करियर और राहुल के प्रेम के बीच उलझ के रह जाती है।

0: समय बीतने के साथ साथ दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं। राहुल को महसूस होता है कि उसने अनु के जीवन में दुख बढ़ा दिए। अंत में प्रेम, त्याग और भावनाओं से भरी घटनाएं कहानी को बहुत मार्मिक बना देती हैं। इस फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत था। लगभग हर गीत सुपरहिट था। आज आपने आनंद लिया आशिकी फिल्म के कुछ गीतों का। इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी

0: जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, हम सभी देख रहे हैं। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी

0: दूसरे चरण में कल स्वीडन की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आकाश ने कहा कि यात्रा
1: बार खुलेंगे। वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद स्वीडन ऑन डिफेंस।
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई

0: हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

इसी वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में आपने सुना दिल विल प्यार व्यार फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, पलक बुच्छल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है MS धोनी।

MS धोनी, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत जिसे गाया था पलक मुच्छल ने। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं रेखा भारद्वाज के स्वरों में। फिल्म का नाम है डेविड।

रेखा भारद्वाज के स्वर में आप सुन रहे थे डेविड फिल्म का गीत। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू,

इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल ओर आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीत

0: संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूं क्योंकि मैं आकाशवाणी हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: ओ न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के तहखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।

0: क्यों नहीं की जाए?
1: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
2: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
1: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा अपनी माँ को खरीद सके।
2: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
2: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल आई तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था। तुम जो

0: राकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता

अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप

0: पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम है मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी।

0: साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि

0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन तीन भाषाओं में से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर तीन कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the